0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण

की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लेख लाडकी या घरची, नवे नवे या भारताची, संपूर्ण विश्वाची, 1929 साली

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्युझिकली योर्स।
1: रेनबो फंडेच्या उत्तरार्धात आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत।
2: फेसबुक इन स्काय, व्हाट्सअप इन लाइफ, मन मोड काम, इथनो आराम, सो स्टार्ट अप योर डे विथ रेनबो फंडे। रेनबो फंडे,
3: रेनबो फंडे, रेनबो फंडे,
2: म्युझिकल साथ, रियल लाइफ बात, सिनेमा नाटक, भटकंती खास, स्टार्ट अप योर डे विथ रेनबो फंडे।

0: ये समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
7: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखड़ कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
8: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
9: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: नमस्कार दोस्तों, सुबह प्रभात, मैं हूं आपका मनमित आर्य अमित और आपने ट्यूनिंग किया है 107.1 FM रेनबो। सुबह के 8:40 हो चुके हैं, 8:40 से लेकर 11 बजे तक

0: मैं आप सभी का साथी बना रहूंगा। पहले हम मस्त मुंबई का सफर तय करेंगे 10 बजे तक, और 10 बजे के उस पार समाचारों के बाद हम लता मंगेशकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बात करेंगे प्लेबैक सिंगर बेला शिंदे जी से। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर के साथ ट्यून इन कीजिए 107.1 FM रेनबो। अक्सर मैं कहता हूं ना, बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे।
1: इतना उदास सुखे सुखे हूँ

हमारे आज के दिन की शुरुआत तो बड़ी ही अनोखी हो गई, मगर क्या हम इस बारे में सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी हमारे शब्दों की होती है। लेकिन सच क्या है? सच तो यह है कि हमारी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है ना। किसी के साथ गलत होते देख चुप रह जाना, किसी को दुखी देख कुछ न कहना, या फिर जरूरत के वक्त मदद न करना, ये भी तो हमारे ही फैसले होते हैं। कई बार हमारे शब्द किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो कई बार हमारा चुप रह जाना भी दूसरों के दुखों की वजह बन सकता है। सिर्फ इस पर ध्यान मत दीजिए दोस्तों कि आपने क्या कहा। कुछ मौकों पर आपकी आवाज किसी टूटते हुए इंसान की आखिरी उम्मीद भी तो हो सकती है। मार्टिन लूथर के विचार से प्रेरित ये बात मैंने आज के सुबह यानी नए वीक का आगाज करते हुए आप सभी से साझा करी है। उम्मीद करता हूं कि कभी कभी ऐसे विचार भी हम सभी को अनोखे मोड़ पर ले जाते हैं। चलो इसी बहाने भगवान को याद करते हैं। आज भारत रत्न लता मंगेशकर जी का जन्मदिन, उसी बहाने उनकी आवाज में सजी हुई कुछ रचनाएं आप सभी को सुना रहे हैं। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के साथ उनकी आवाज में छुपा हुआ वो डिवाइन मूड और उसी सुरों के जादू का ये अनोखा अंदाज, आइए उसका अनुभव लेते हैं। Keep listening 107.1 FM Rainbow with आपका मनमीत RJ अमीर।

लता जी की आवाज में जब डिवोशनल मूड की ओर बढ़ते हैं तब किसी एक गाने से हमारा मन नहीं भरता। चलिए एक और राम भजन सुनते हैं लता जी की आवाज में गाया हुआ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका मनमीत आरजे मीत और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मस्त मुंबई ये प्रोग्राम चल रहा है। वैसे हर दिन बड़ा खास होता है, मगर आज के दिन की क्या क्या खास बात है। एक बात तो मैंने पहले बता दी, हमारे देश के सबसे बड़ी उपलब्धि भारत रत्न लता मंगेशकर जी, उनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में 10 से 11 के बीच प्लेबैक सिंगर बेला शिंदे जी से हम माफी चाहूंगा बेला सुलाखे जी से हम बात करेंगे और उनसे गुफ्तगु करते हुए लता जी की कुछ यादों को आप सभी के संग साझा करेंगे। साथ ही अपने बेहतरीन आवाज के दम पर 8 दशकों तक देश में गायकी का वे एकमात्र पर्याय रही हैं। अपने गीतों के मोतियों से उन्होंने संगीत के खजाने को समृद्ध बनाया। ऐसे लता जी की अपनी एक मधुर आवाज, उससे कई दशक संगीत के खजाने में हर दिन नए नए मोती भरती रही लता जी। 1929 को इंदौर में उनका जन्म हुआ था। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जी उनके पिताजी, उनसे जो कुछ भी सीखा वो अपने गायकी के जरिए लोगों के सामने लाया। भारत रत्न लता जी ने अपनी आवाज और अपनी सुर साधना से बहुत ही छोटी उम्र में गायन में जब महारत हासिल की और विभिन्न भाषाओं में गीत गाए तो वो एक अपने आप में चमत्कार ही माना गया। पिछली पीढ़ी ने जहां लता जी की शोख और रुमानी आवाज का लुत्फ उठाया, वहीं अगली पीढ़ी ने हर दशक में समंदर की तरह ठहरी हुई परिपक्व गायकी को सुनते हुए लता जी की आवाज की, उनकी गायकी की सराहना की है। आज मस्त मुंबई शो के आज के मस्ताने सेगमेंट में ये दिन ऊर्जा भरा हो, इसलिए हम गानों के साथ साथ कई सारी बातें भी आप सभी के संग बांटने लाए हैं। हम चाहते हैं उन बातों को आप सभी के संग उजागर करते रहें। मगर फिलहाल लता मंगेशकर की आवाज में गाई एक और रचना, फिल्म नूरी, और उसी फिल्म का ये काफी मशहूर गीत नितिन मुकेश की आवाज साथ में है, जान निसार अख्तर के बोल।

लता जी की आवाज में सजे कुछ सदाबहार गाने और आज के दिन की खास बात आप सभी के संग साझा करते वक्त मुझे कवि सुमित्रानंदन पंत जी की आज याद आ रही हैं, क्योंकि आज के दिन 1977 में वे हम सभी को छोड़ चले गए थे। 1907 में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी का जन्म आज के दिन हुआ था। ऐसी कुछ हस्तियां आज की तारीख से जुड़ी हुई हैं जिनका हम जिक्र जरूर करना चाहेंगे, मगर नूरी का गाना सुनाते वक्त ये दूरी मिटाने वाले हमारे जितने सारे श्रोता हैं उन सभी का जिक्र किए बिना मैं आगे कैसे बढ़ूं। चेतन कुमार, प्रमोद चिंचोलकर, यशवंत आडमुठे, पंकज मोहट, पूजा, प्रणव शिंदे, कल्पना राजू, वासुदेवन और रविंद्र कोड़ापे, रौनक कोड़ापे जो कि नागपुर से जुड़े हैं, फिरोज सिगानपुरिया जी हैं और दीपाली शिरोडकर, राकेश माथुर, विजेंद्र घटोल, रजनीकांत पाटिल, विश्वास चांदोरकर, दीपा पालकर, महेश भाटकर, किशोर नाइक, शोभा सप्रे, कृष्णानंद हमें सिडनी से सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर, जय श्री गोखले जी हैं, सुरेश पावकर जी हैं और जगन्नाथ केदारी जी खंडाला से हैं जो कि ब्लाइंड हैं फिर भी हमारे शो को अक्सर सुनते हैं और उनका कहना होता है ये मस्त मुंबई का शो जो है ना वो मॉर्निंग 8 to 11 में हमारे दिन की कुछ इस कदर

शुरुआत कर जाता है कि वो दिन बड़ा ही सुहाना हो जाता है। ऐसे हमारे सभी श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे क्या गाने के जरिए सुनो नजा मेरे हमारे। Keep listening 107.1 FM Rainbow with आपका मनमीत आरजे अमित।

गिफ्ट हैं हम सभी के लिए लता मंगेशकर जी। और उस गिफ्ट ने 8 दशकों तक अपने सुरों का कुछ ऐसा समा बांधा, समा बनाया, या फिर सुरों का जादू बिखेरा कि मानो आज तक उससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और आए भी क्यों भाई, उसमें हम मज़े लेते लेते अगर आगे बढ़े तो ज़्यादा मज़ा आए, है ना। मगर ये आज का दिन इतना ख़ास है ना, कल का दिन भी इतना ख़ास रहा। मैं तो इतना चकित हो गया कि एक तरफ एक मैच में 3-3 सेंचुरीज लग रही है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी के बाद, हमारे हिंदुस्तान के दोनों खिलाड़ियों ने सेंचुरी जड़ी, उसमें कैप्टन शुभमन गिल और साथ ही विराट कोहली के 15,000 रन पूरे होकर उनकी सेंचुरी का भी अनोखा अंदाज, और लगभग 9-10 छक्के मारे यार, क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे विराट। वो दिखा रहे कि कंसिस्टेंसी के रूप में अगर उनका सामना करने कोई आगे आए ना तो ये मुमकिन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सचिन तेंदुलकर का 15,000 रन का रिकॉर्ड तो उन्होंने ब्रेक कर दिया है, और कई सारे रिकॉर्ड्स भी बस यूं ही ब्रेक करते रहेंगे और अपने जबरदस्त खेल के दम पर अपने जीवन में हरियाली लाते रहेंगे, रास्ता मंजिल की ओर लेते जाएगा। सुनते रहना FM रेनबो पर आज के मस्ताना सेगमेंट मस्त मुंबई प्रोग्राम में आपका मनमीत आरजे अमित के साथ।

यह हरियाली और ये रास्ता इस गाने के संग हम ये सफर आगे ले जा रहे हैं। 9:23 हो चुके हैं और हमें आज ये बात भी सुनने मिलती है कि आज के मस्तान इस सेगमेंट में हम ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का जिक्र जरूर करें। आप कहेंगे क्यों, अरे भाई 1982 में उनका जन्म जो हुआ आज की तारीख में, तो उन्हें भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और जाने माने एक्टर रणबीर कपूर भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें भी हम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। वैसे हमारे संग बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं, कुछ नए श्रोता भी जुड़ चुके हैं। हर किसी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया देखो, आप अगर प्रोग्राम सुनते रहेंगे तो सुनते ज़रूर रहना, बट हमें इत्तला तो कर दो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, ताकि पता चले कि कई सारे श्रोता किस तरह इस प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। 8657-661-0711 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ नोट इट डाउन एंड लिसन वन मोर सॉन्ग। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सजा हुआ ये ड्यूएट आप सभी के लिए।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल, आप सुनेंगे पीरियडिक अपडेट।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: सुप्रभात, स्वागत आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। तो चलिए आज की पहली अपडेट की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। कुराश में भारतीय जुडोका 2018 एशियाई खेलों के सिल्वर मेडलिस्ट पिंकी बलहारा ने कुराश के महिला 78 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता लिम गारम को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही पिंकी ने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। यह एशियाई खेलों के इतिहास में कुराश में भारत का तीसरा पदक होगा।
3: Let's talk about the continuing good news streak from this morning, coming in from a second consecutive win for India in the men's volleyball at the Asian Games. So, after opening their Pool C campaign with a straight sets victory over Vietnam yesterday, the Indian team has continued its winning run today, defeating Hong Kong China by 3-0. So, India took the first set 25-22, followed by a 25-19 win in the second, before closing out the match 25-21 in the third. It was another composed performance from the Indian side. Two matches, two wins for India in Pool C. The team's next pool match is against Qatar tomorrow, where we will look forward to maintain our unbeaten start.
2: स्क्वैश की बात कर लेते हैं। जैसा कल दो पदक स्क्वैश से हमें मिला था, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने चीन को 2-1

0: से हराकर शानदार जीत दर्ज की। निर्णायक मुकाबले में अनुभवी ज्योत्सना चिनप्पा ने चीन की ल्यू जी को लगातार 3 गेम में 12-10, 11-4, 11-6 से शिकस्त दी। इससे पहले दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था। ऐसे में ज्योत्सना चिनप्पा पर निर्णायक मुकाबले में जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया और भारत को महत्वपूर्ण जीत दिलाई।
1: Let's have a look at the exciting news coming in from surfing, where Kishore Kumar has booked his place in the quarterfinals of the men's short boat event. Kishore was in action in the round of 16 against China and produced a strong performance, edging past his Chinese opponent 9.76 to 8.80. That victory takes Kishore into the last eight and keeps India's hopes alive in surfing. I have to tell you here that he is now the only Indian surfer remaining in the competition with the quarterfinal stage still to come.
0: शूटिंग से कुछ अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही विदुषी। देखा जाए तो एशियाई खेल 2026 का जो 25 मीटर पिस्टल भारतीय टीम जो टीम इवेंट था उसमें पदक से चूक गई। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के टीम इवेंट में भारत 5वें स्थान पर रहा और पदक से चूक गया। व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में ईशा सिंह 580 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रही और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और वो एकमात्र भारतीय रही जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने चाइनीज ताइपे की चेंग येन चिंग को इनर 10 के आधार पर 24-22 से पीछे छोड़ा। मनु भाकर 579 अंकों के साथ 11वें स्थान पर रही और फाइनल में जगह नहीं बना सकी। वहीं राही सरनोबत 568 अंकों के साथ 30वें स्थान पर रही। राही की पहली रैपिड सीरीज में एक ऐसी गलती थी जिसका असर पूरी टीम पर पड़ा और टीम इवेंट में भारत से पदक चूक गया। अगर वहीं पर सीरीज जो उनको अंतिम जो निशाना लगाना था वहां पर वो बेहतर करती, यकीनी तौर पर भारत के लिए कुछ अच्छी खबर आती विदुषी।
1: That's how we also talk about some news that we have from women's sepak takraw, where India have gone down to Japan in their latest Group B encounter. So India fought hard in a closely contested match, but Japan came through 2-1. Japan took the opening set 15-11, but India responded strongly in the second, winning it 15-9 to level the match. The deciding third set went right down to the wire, but Japan edged it 15-13 to seal the victory. So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan. But that's not all we have right now. There is some very interesting action coming to you from archery as well, where in the men's compound individual event, Ganesh Mani Ratnam has booked his place in the quarterfinals, defeating fellow Indian archer Sahil Jadhav in a thrilling pre-quarterfinal encounter. It was a very close contest, with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the all Indian battle by just 1 point. Now we also look ahead, because there is more action coming in from the women's compound individual event, with Pritika, Chikita and Jyoti Surekha set to begin their round of 32 and round of 16 matches at 9:45.
0: Din ki jab shuruaat ho rahi hai to bhartiye jo team भारतीय खिलाड़ियों ने जो मेडल जीते उसके बारे में बता देते हैं। भारत ने अब तक 37 पदक जीत लिए हैं एशियन गेम्स में, जिसमें 4 गोल्ड, 16 सिल्वर, 17 कांस्य समेत कुल 37 पदक हैं। अगले एक घंटे में क्या कुछ घटित होता है हम जरूर आपको बताएंगे ठीक 10:30 पर। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे दोस्त विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर एशियन गेम्स के अपडेट्स। फिर एक बार हम बढ़ते हैं मस्त मुंबई के अगले पड़ाव पर, जहां फिल्म बॉबी से एक गाना मैंने आप सभी के लिए चुना हुआ है। और ये गाना कुछ ऐसा भी है कि लता जी की आवाज़ में सजा है, लक्ष्मी प्यारे ने गाया है, संगीत रचना दी है और आनंद बख्शी साहब ने लिखा है। और ये जो गीत है ना, इस गीत को प्रस्तुत करने के पीछे कारण है हमारे श्रोता है ना प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे, ये अक्सर हमें बतलाते हैं कि आज के दिन कौन सी फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो बॉबी फिल्म 28 सितंबर को रिलीज़ हुई थी, पता है 1973 में। 53 साल हो चुके हैं इसी फिल्म को। तो हम चाहते हैं इसी फिल्म का एक गाना आपको जरूर सुनाएं, और वो भी

कुछ लोग चोरियां कर रहे थे और उनकी चोरी पकड़ी भी गई, पता है पुलिस ने उन्हें पकड़ भी लिया। बट आज एक बात समझ में आई कि विसर्जन के दौरान ज्यादातर फोन की चोरी हो चुकी है और 192 फोन चोरी हो चुके हैं। अब देखिए, एक तरफ ऐसी बात सामने आती है तो दूसरी तरफ हमारे बापा को विदा करने के बाद जो मलबा हटाया गया ना, वो लगभग 2755 मेट्रिक टन रहा है, मगर मलबे को रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल में लाने की जो तैयारी में जुटे हैं हमारे साथी, उनको सच में हम सैल्यूट करना चाहेंगे। और ये एक ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार की वजह से हम सब एक साथ आ जाते हैं, मगर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियाँ या मिट्टी की मूर्तियाँ एक तरफ प्राकृतिक रूप से आसानी से नहीं ना खुलती। ऐसे में कृत्रिम विसर्जन तालाबों में कुछ प्राकृतिक वाटर बॉडीज में जब पहुंच जाए तो पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है, और इसी की वजह से जो विसर्जन स्थलों का जो पानी होता है वो दोबारा इस्तेमाल करने में परेशानी होती है ना। इसलिए ये सारी सामग्री हटाना काफ़ी ज़रूरी होता है जो समुद्र तटों पर हैं, जलाशयों के किनारे पर हैं। विसर्जन के बाद ये मूर्तियाँ टूटती तो हैं, बिखर भी जाती हैं, मगर हमारे बीएमसी के जितने सारे अधिकारी इस काम में जुटे हुए हैं ना, हम चाहते हैं यार उनकी भी लंबी उम्र के लिए हम प्रार्थना करें। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और यूं ही आप काम करते रहे सर, हम सारे मुंबईकर आपके सपोर्ट में ज़रूर खड़े रहेंगे। आइए मुकेश और लता मंगेशकर इनकी आवाज़ में सजा एक ड्यूएट आपको सुनाते हैं। 107.1 FM रेनबो पर सुनते रहना मस्त मुंबई, ये शो आरजे अमित के संग।

हमारे कई सारे श्रोता आज अपने अपने नाम के साथ हमारे संग जुड़े, मैसेजेस करे। प्रकाश इंद्र जी तो कहते हैं, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि कई सालों पहले लता जी से रूबरू होने का उन्हें मौका मिला है। ये हर किसी के नसीब में तो नहीं होता ना, तो आप बड़े लकी हैं और हम भी बड़े लकी हैं कि उनके गानों के संग आपको एंटरटेन कर पा रहे हैं। अजय साखरे इंदौर से, प्रकाश इंद्र जी, सुरेश वैष्णव, प्रणव शिंदे, दीपा पालकर, फिरोज सिकानपुरिया, बाबा है दादर से पंकज मोहड़, मिलिंद शिधिये जी, दीपाली शिरोडकर, श्रीधर मुरस्कर, स्नेहा है वर्ली से, सुनील जंगम, पूरी जंगम फैमिली, गणेश पाटिल वाधवन से, पूजा धानोरकर, शुभलक्ष्मी मस्तकार और केदारे जी, कल्पना राजू हैं उल्लासनगर से, चेतन कुमार हैं हमारे संग जुड़े हुए हैं गया बिहार से मैसेज करते हैं, प्रमोद चिंचोलकर जी हैं उमरिया कोला से, यशवंत आडमुटे जी, वासुदेवन और रविंद्र कुड़ापे, राकेश माथुर, रजनीकांत पाटिल वाधवन से, विश्वास चांदोरकर, महेश भाटकर हैं सेंटाक्रूज से, किशोर नाइक, शोभा सप्रे सिडनी से, कृष्णानंद कामत और जय श्री गोखले जी हैं, सुरेश बावकर, गायत्री वैशंपायन, राजेंद्र जुठानी जी, इन सभी का मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक 10 बजे आप हिंदी में समाचार सुन पाएंगे और समाचार के उस पार मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जो कि एक बहुत ही जानी मानी प्लेबैक सिंगर है। लता जी का साथ उन्हें मिला है, सहयोग मिला है, उनका आशीर्वाद भी मिला है और उनके संग परफॉर्म भी किया है उन्होंने, और हम चाहेंगे लता जी के गायकी के रंग विभिन्न संगीतकारों के संग कैसे रहे वो हम जान ले। बेला सुलाखे जिसे हम गुफ्तगू करने वाले हैं, अगर आपके कोई सवालात हो तो आप भी मुझे भेज सकते हैं 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और हम चाहते हैं कि इसी के साथ इस घंटे में आखिरी गीत की ओर आप सभी को ले जाए। ये सिर्फ आखिरी गाना नहीं होगा बल्कि गाने के साथ साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे इस घंटे के लिए। बस कुछ ही देर में हम अगले सेगमेंट में मिलने वाले हैं नमस्ते भारत प्रोग्राम में। तो आइए ये आखिरी गीत इस घंटे का यानी मस्त मुंबई का आप सभी के लिए, सुनते रहना FM रेनबो, आपका मनमीत आरजे अमित के साथ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात के 138वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। समाचार में आगे, गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। समाचार में आगे, महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने कल बांस आधारित अर्थव्यवस्था और सतत विकास सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री वर्मा ने राज्य में सतत विकास, ग्रामीण रोजगार और प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए बांस आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। और समाचार के अंत में खबर है खेल जगत से जुड़ी हुई। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से शुरू होगा। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का मैं आरजे अमित तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं FM रेनबो पर नमस्ते भारत इस कार्यक्रम में। वैसे देखने जाए तो आज का दिन बड़ा खास है। क्यों? अरे क्योंकि आज भारत रत्न लताजी का जन्मदिन जो हम मना रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज का जादू आज तक हम सभी के दिलो दिमाग पर कायम है। वे आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, उसका दुख है, मगर उनकी गायकी का रंग और उनके गाने हमारे मन में लताजी को सदा अमर रखेंगे। उनके बारे में ऐसी क्या बात है जो कहीं न जाए। एक उत्कृष्ट गायिका, उनके जैसा कोई और था ही नहीं। कैसे बताए कि इतनी सारी भाषाओं में इतने दशकों तक कैसे कोई गा सकता है, अपनी आवाज को इतना जवां कैसे रख पाता है। उनकी बराबरी करने वाली कोई और गायिका कभी हो नहीं पाई और शायद कभी हो भी नहीं पाएगी। उनकी आवाज की मिठास, उनका अद्भुत नियंत्रण और सबसे कठिन धुनों को सहजता से गाने का उनका अंदाज। लता मंगेशकर जी के प्रति हमारे मन में ये जो सम्मान है, उस सम्मान को और बढ़ावा देता रहता है। हम चाहेंगे आज भारत की बुलबुल स्वर कोयल भारत रत्न लता मंगेशकर जी को स्वर सुमन समर्पित करते हुए उनकी यादों को हम तरोताजा करें। और उसके लिए हमारे संग जुड़ने जा रही हैं एक बहुत ही जानी मानी प्लेबैक सिंगर, कंपोजर और परफॉर्मर। म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कई सालों से अपना योगदान दिया है। और पता है, महज 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना सबसे पहला सोलो परफॉर्मेंस दिया। यस, एक इतनी छोटी सी बच्ची गा रही हैं, ये देख के कई सारे जाने माने उस जमाने के प्लेबैक सिंगर्स भी चौंक गए। आशा भोसले जी हो, किशोर कुमार जी हो, इन सभी ने उनकी सराहना की। और पता है किशोर कुमार जी ने क्या कहा? ये है हमारी छोटी लता। देखिए, 9 साल की उम्र में अगर किसी बड़े प्लेबैक सिंगर की ओर से हमारी छोटी लता इस खिताब से नवाजा जाए तो उनका आनंद किस तरह हम देखते ही बनता है ना। आज तक पूरी दुनिया में कई सारे परफॉर्मेंसेस देने वाली इस गायिका ने अपने कई कॉन्सर्ट्स किए हैं, मगर पता है प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में चाहे माधुरी दीक्षित हो, करिश्मा कपूर हो, प्रीति जिंटा हो, रवीना टंडन हो, जूही चावला हो, या फिर कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स यानी अनु मलिक, आनंद मिलिंद, बप्पी लाहिरी, रवि खयाम, आदि श्रीवास्तव और आज के ज़माने के अजय अतुल तक उन्होंने कई सारे संगीतकारों के लिए अपनी आवाज़ दी है। कई कवर वर्जन्स गाए हैं, अलग अलग कंपनीज के लिए, कैसेट कंपनीज के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ दी है, रीजनल सॉन्ग्स गाए हैं, भजन गाए हैं, कव्वाली हो, गज़ल हो, अरे गायकी की ऐसे कोई विधा नहीं है, कोई रंग नहीं है जो उनकी आवाज़ से छू न गया हो। उन्होंने हयाम साहब, रवि जी, बप्पी लाहिरी जी, उनके प्राइवेट एल्बम्स के लिए भी अपनी आवाज़ दी है और टीवी सीरियल्स के लिए। हम चाहते हैं ऐसी ही शख्सियत से हम रूबरू हो जिन्होंने मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, आसामी, ओरिया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और कई सारी लैंग्वेजेस में गाया है। वे अपने आप में एक बहुत जानी मानी पेंटर भी हैं और उतनी ही ज़बरदस्त फोटोग्राफर भी। तो आइए, बेला सुलाखे जी से गुफ्तगु करने के लिए हम हैं तैयार, मगर उससे पहले लता मंगेशकर की आवाज़ में गाई इस रचना को हम आप सभी के बीच लाना चाहते हैं।

0: तो आइए आज हमारी छोटी लता ये कहकर किशोर कुमार जी ने जिनको पुकारा था ऐसी प्लेबैक सिंगर बेला सुलाखे जी का हम एफएम रेनबो के नमस्ते भारत इस कार्यक्रम में गपशप विद आरजे अमित इस सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत करते हैं। बेला जी नमस्कार।
1: नमस्कार अमित जी,
0: आपका स्वागत है एफएम रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा परिचय दिया मेरा।
0: जी जी।
1: और आज हम सब आपके सारे सुनने वाले सारा संगीत का जगत आज लता जी को सेलिब्रेट कर रहा है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी उपलक्ष में आपने मुझे बुलाया तो मैं बहुत ही इस बात के लिए आपकी आभारी भी हूँ। और सुनने वालों को बस यही कहूंगी कि हम सब बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमने उस युग में जन्म लिया जहाँ हमने लता जी को सुना, उनकी गायकी के अनेकों पहलुओं को सुना समझा, और जिन्होंने भी उनसे बात की। जैसे मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे उनको मिलने का कई बार मौका मिला, तो मैं यही कह सकती हूँ कि बस वो साक्षात सरस्वती स्वरूप ही हम जिनको मानते हैं। जिस गीत को भी उन्होंने छुआ उसका राग बना दिया, जैसे पारस सोना बनाती थी इसको, बस उनकी आवाज में वो पारस था कि हर गीत को उन्होंने सोना बना दिया।
0: वाह क्या बात है। बेला जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी लता जी से?
1: मेरी पहली मुलाकात उनसे बहुत, मैं छोटी थी। मेरे ख्याल से 1980s या 82 ऐसी कोई मुझे याद नहीं है ठीक से, पर लता जी एक प्रोग्राम में गा रही थी और मैंने उनको रिहर्सल करते हुए सुना था। पूरी आंखें मेरी भरी हुई थी कि मैं ये जो साक्षात्कार मेरे सामने खड़ा है, सरस्वती माँ सामने खड़ी होके गा रही हैं, और मेरी आंखें भर रही थी और बस मैं सुन रही थी, उनको देख रही थी। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने जाके उनके पैर छुए, फिर उन्होंने मेरे सिर पे हाथ धरा और कहा अच्छा क्या नाम है, फिर नाम पूछा, मैंने नाम बताया, और मैं बहुत मतलब सहमी सी डरी सी, जैसे साक्षात भगवान अगर आपके सामने आए तो फिर आप क्या कहते
0: हैं,
1: वैसी मेरी हालत थी। उसके बाद धीरे धीरे फिर हिम्मत करके मैं उनसे बातें करने लगी, मतलब उस बात की नहीं है, फिर उसके बाद जब भी मुलाकातें हुई फिर फोन पे बातें कई बार हुई उनसे, तो ये मेरी कुछ बहुत अच्छी यादें हैं
0: जी। मुझे ऐसे लगता है ना, देखिए हर किसी को अपने करियर में खुद को साबित करने के लिए या स्थापित भी करने के लिए एक मौके की जरूरत होती है ना, और हर गायक के लिए उनकी प्रतिभा को जानकर हर संगीतकार ये मौके उपलब्ध कराते हैं, मगर लता जी के गायकी के रंग अगर हम देखने जाए तो उसमें विभिन्न संगीतकारों के संग उनका तालमेल रहा है। तो आज इसी टैगलाइन के साथ मैं ये इंटरव्यू आप सभी से आपसे ले रहा हूं, और आपसे बातें करते हुए मुझे ये जानना है कि लता जी की गायकी के रंग अलग अलग संगीतकारों के संग कैसे खिलते चले गए। अगर शुरुआती दौर के कुछ संगीतकारों का जिक्र करें तो आप किन संगीतकारों के नाम लेना चाहेंगे और उसमें लता जी कैसी अलग सुनाई देती हैं?
1: जी जी, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ इसके बारे में, जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल। और उससे पहले एक बात को मैं आपसे आपके सुनने वालों तक पहुँचाना चाहूंगी। आपने कहा कि किशोरदा मुझे छोटी लता कहते थे, मैं इस बात को बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये किशोरदा के साथ मैंने चूंकि बहुत बचपन से प्रोग्राम्स किए देश में विदेश में, तो और मैं सारे लता जी के गीत गाती थी, तो वो प्यार से, वो उनका बड़प्पन था मेरे लिए, प्यार था कि वो मुझे छोटी लता कह के बुलाते थे स्टेज पर। लेकिन मुझे लगता है कि इस युग में हमारे बाद भगवान ने लता मंगेशकर एक ही बनाई थी, वो गई, वो रहेंगी, अपनी आवाज के जरिए आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेंगी। कोई छोटी बड़ी लता दुनिया में फिर नहीं होगी, लता जी सिर्फ एक थी और एक ही रहेंगी, ये बात बिल्कुल मतलब सच है।
0: वाह,
1: तो ये ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं कि मैं कहीं से भी लता जी के आसपास, मतलब मैंने उनको एक भगवान का स्थान वहां ऊंचाई पर रखा है कि जहां तक सिर्फ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आशीर्वाद पा सकते हैं।
0: वाह बेला जी,
1: कोई नहीं पहुंच सकता।
0: सच में आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं इस दौरान एक गाना हर किसी को सुनाया जाए, और इस गाने के बाद हम चाहेंगे हमारे सवाल का जवाब आप दीजिए, किसी संगीतकार के संग लता जी का तालमेल कैसा रहा है शुरुआती दौर में। बने रहना एफएम रेनबो पर आपका मनमीत आरजे अमित के संग नमस्ते भारत में। हम बात कर रहे हैं बेला सुलाखे जी से।

0: फिल्म परख से शैलेंद्र जी ने लिखा और सलील चौधरी जी ने कंपोज किया, लता जी की आवाज में गाया ये गाना आप सुन रहे थे। हम बेला सुलाखे जी से बात कर रहे हैं। बेला जी, आपने ये धुन सुनी?
1: जी बिल्कुल सुनी।
0: कितना प्यारा गाना है।
1: बहुत ही प्यारा, और ये सलील चौधरी जी का बंगाली गीत भी बहुत प्यारा है।
0: अच्छा,
1: आशी कैनो गाए। हाँ जी।
0: अच्छा, कैसा है, जरा सुनाइए दो लाइनें।
1: अरे बाप रे, वो वर्ड्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बाशी कैनो गाय हमारे कादाय कि है छे हराए शोरो निरो बेदोनाय रा रा रा रा रा रा रा बाशी कैनो गाय।
0: कितनी मिठास है, देखिए।
1: वर्ड माफ कीजिए, वर्ड मुझे आज बहुत दिनों बाद ये गाना सुना तो याद आया कि उन्होंने कितने गाने अलग अलग भाषाओं में गाए हैं, और हर गाना मतलब वो क्या कहें, क्या कहें।
0: अब देखिए, इतने सारे गाने तो हैं, मगर इन गानों के साथ उनका नाम जब आता है तब पता चलता है कि लता जी की आवाज में क्या सादगी रही, क्या जबरदस्त सुरों की ताकत रही। और आपने जब गुनगुनाया तब हमें पता चला कि किशोरदा ने यूं ही नहीं कहा होगा, हमारी छोटी लता।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, बस मेरी कोशिश है, मेरा प्यार है लता जी को, मैंने पूजा है, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। और लता जी के बारे में जो आपने कहा ना कि वो उनकी तैयारी, उनके ऊपर जो संस्कार हुए, उनकी परवरिश ही संगीत के साथ हुई है। अपने पिता से उन्होंने जो पाया है वो उन्होंने बहुत कम समय के लिए पाया, लेकिन वो उसकी जो उसका जो दर्जा था उसको जिस तरह से उन्होंने अपनाया वो उनको बहुत दूर तक ले गया। लेकिन उसके साथ साथ जब वो आई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो हुस्नलाल भगत राम, अनिल विश्वास जी, श्याम सुंदर, सज्जाद, नौशाद साहब और कई नाम है शायद मैं भूल रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो इनसे गाने गवाए और उसके साथ साथ इनको जो उच्चारण, भावनाएं, शब्द को, वो हमेशा कहती थी कि गानों के बीच में सांस कैसे लेना है।
0: अच्छा,
1: अनिल विश्वास जी ने उनको सिखाया।
0: अच्छा, और वो अक्सर सुनाई भी नहीं देती उनके साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो क्योंकि एक मैं एक सिंगर होने के नाते जब मैंने माइक के ऊपर खड़े होके रिकॉर्डिंग में कवर वर्जन गाए तो मुझे लगा ये तो बड़ा ही मुश्किल है, ये कैसे कर लिया। और उस जमाने में जबकि कटिंग पेस्टिंग ऑटो ट्यून नहीं था, उस जमाने में ना इको मशीन्स थी ना टेक्निकली इतना ऊपर था कि एक गलती हो तो सारे म्यूजिशियंस के साथ गाना फिर से गाना पड़ता था।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और ऐसे में इस तरह का परफेक्शन देना सिंगिंग के लिए ये अद्भुत, मतलब ये सिर्फ एक चमत्कार ही हो सकता है
0: सच में।
1: जब आज भी आज 60-70 साल 80 साल बाद हम गाने उनके सुनते

0: हैं, आप एक नुक्स नहीं निकाल सकते कि शायद ये लाइन फिर से करनी चाहिए थी।
1: अच्छा,
0: नहीं कह सकते आप। उनकी सांस तो आप बता ही नहीं सकते कि कहाँ पे सांस लिए, पता ही नहीं।
1: सच में, सच में।
0: पानी की तरह, धुएं की तरह आवाज बस बहती जा रही है, किसी भी ऑक्टेव में गा रही है और विदाउट एनी स्ट्रेस। मतलब आप सुनेंगे तो लगेगा नहीं कि गाना शायद एक सुर नीचे लेना चाहिए था या ऊपर लेना चाहिए था। हर किसी भी सुर में कहिए, वो आवाज उतनी ही फ्लॉलेस, एफर्टलेस। ऐसे गाना, मतलब ये यहाँ पे हमारे हाथ जुड़ जाते हैं और हम नतमस्तक हो जाते हैं। ये लता जी ही कर सकती हैं।
1: सच में, सच में। बट बेला जी, मुझे याद आ रहा है वो वाक्य जब, मतलब हमने कुछ काम कर दिखाया बराबर, बट अच्छे काम की सराहना तो हो रही है मगर उसका क्रेडिट हमें नहीं मिल रहा है। ये लता जी के संग जब शुरुआती दौर में हुआ तब
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: वो साझा कीजिए ना प्लीज।
0: आएगा आने वाला गीत के बारे में ऐसा हुआ था।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: ये बात तो सब जानते हैं, ये कोई मेरी मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ, लेकिन लता जी की तरफ से ही ये बात सुनी थी कि आएगा आने वाला जब रिकॉर्ड हुआ था,
1: खेमचंद प्रकाश जी ने रिकॉर्ड किया,
0: और उस पर कामिनी नाम आया था रिकॉर्ड पर, मधुबाला का नाम फिल्म में था। तो लोगों ने कहा कि ये कामिनी की तो आवाज है नहीं, हम जानते हैं कि ये फिल्म की, ये गाना किसने गाया है। रिकॉर्ड रेडियो स्टेशन पे लोगों ने खत लिखे, फोन करके जानना चाहा कि ये गाया किसने है, हमें इनका नाम बताइए। तब जाके लोगों को पता चला कि कोई लता मंगेशकर नहीं, कोई गायिका है जिन्होंने ये गाया है। और तब ये बात हुई कि नहीं, अभी रिकॉर्ड पे नाम देना जरूरी है। तो ये तब से ये नाम आने लगा।
1: क्या बात है,
0: उनको क्रेडिट उसका तब जाके मिला। और इस गाने के बारे में एक आप पहले गाना सुनाए ताकि मैं आपको इसके बारे में और बात करूं, इस गाने के बारे में।
1: जी जी जी जी, जरूर।
0: आएगा आने वाला जरूर सुनाइएगा।
1: यस यस यस यस। और ये जो पीछे बैकग्राउंड में आपको आवाज सुनाई दे रही है ना, ये लता जी की आवाज है 50 के दहाई की। हम चाहेंगे लता जी के करियर का सबसे पहला हिट गाना नमस्ते भारत में गपशप विद आर जे अमित के सेगमेंट में मैं जरूर आपको सुनाऊं। बने रहेंगे बिला जी के संग। इस गाने के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। अगर आपके कुछ सवाल हो तो 8657661071 पर जरूर मैसेज करें ताकि हम बिला जी से पूछ पाए।

0: बिला जी, आएगा आने वाला सुनते सुनते आपके जहन में कौन सी बात आ रही थी?
1: मैं ये कहना चाहती थी कि उस जमाने में इको मशीन नहीं थे और लता जी ने ये गाना जो इसकी जो शुरुआत में जो हॉन्टिंग इफेक्ट है, इको मशीन नहीं थे तो वो जिस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थी वहाँ वॉशरूम में ये गुनगुना रही थी।
0: अच्छा।
1: और वहाँ का एकुस्टिक ऐसा था कि वहाँ की आवाज उनकी इतनी अच्छी तरह गूंज रही थी कि जब बाहर उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि यही इफेक्ट तो हमें चाहिए गाने में, जो हमारे पास मशीन नहीं है तो क्यों ना उसको वहाँ से गाते हुए लता जी आए ताकि हमें वो इफेक्ट मिले। तो वो बाथरूम से वॉशरूम से गाते हुए वो जो शुरुआत का जो खामोश है जमाना वाला पार्ट है वो गाते गाते आई और फिर उन्होंने ये रिकॉर्ड किया। वो इफेक्ट इतना जबरदस्त था कि आज भी हम सुनते हैं तो हमें नहीं लगता कि ये गाना इस तरह से चलते चलते गाया होगा और म्यूजिशियन साइड में बैठे थे और फिर ये रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि उसमें तो ज्यादा वाइब्रोफोन और ज्यादा म्यूजिक नहीं है, लेकिन वो साइड में थे और उनको सुर देते थे और वहां से बाथरूम से गाते हुए लता जी आई, उन्होंने वो रिकॉर्ड किया और फिर जाके गाना स्टूडियो में बाकी का गाना रिकॉर्ड हुआ। ऐसे टेक्निकली वो ये स्टोरी बताती है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो हम
0: बेला जी अगले पायदान पर
1: जीनियस थे लोग उस जमाने में और लता जी के तो क्या कहने, उनकी तो मेमोरी एलिफेंट्स मेमोरी कहते हैं।
0: हाँ।
1: उन्होंने जो भी सीखा वो उन्होंने अपने आप में ढाल भी लिया और उसमें और चांद चांद लगा के उन्होंने।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: स्वागत है दोस्तों आप सबका आज की इस अपडेट में। एशियन गेम 2026 के जो अब तक के ताज़ा नतीजे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। अभी भी खबर आई, भारत ने मेडल पक्का कर लिया। जी हाँ, मुक्केबाजी की बात कर रहा हूँ मैं। मुक्केबाजी में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिस तरह के वो मुक्केबाज है, धाकड़ मुक्केबाज है, उनका वही खेल देखने को मिला। जी हाँ, ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने दमदार प्रदर्शन करते हुए महिला 75 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की स्वेन सेओंग को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हरा दिया है। लवलीना ने मुकाबले के तीनों राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। तीनों राउंड में भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में 5-0 का फैसला रहा। इस शानदार जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली और भारत के लिए एक पदक और पक्का हो गया है मुक्केबाजी में। अब लवलीना की नजरें फाइनल में जगह बनाने की होगी और पदक का रंग भी बदलना चाहेंगी।
4: And now there is big news from cricket as well, with Team India through to the semi-finals of the Asian Games Men's T20 tournament with a bowl without being bowled at all. India's quarter-final against Afghanistan was abandoned without a toss because of a persistent rain. But here is the crucial part of the story. India's higher ICC T20 ranking became the deciding factor. And under the Asian Games tournament regulations, when a quarter-final is washed out without a result, the higher ranked team advances. So India's superior ranking has sent them through to the semi-finals. India will now wait for the winner of the Sri Lanka versus Nepal quarter-final to determine their semi-final opponent.
3: जी बिल्कुल, भारत क्रिकेट का पावर हाउस और क्रिकेट में भारतीय टीम आगे न बढ़े ऐसा हो नहीं सकता। और अपनी रैंकिंग के आधार पर जिस तरह से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, उम्मीद करेंगे वहां भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को क्रिकेट में महिलाओं की तरह पुरुषों में गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है। खैर, बात करते हैं यहाँ पर स्क्वैश की, जहाँ पर कोर्ट पर शानदार दमखम दिखाते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने चीन को एक तरफा अंदाज में मात दे दी। जी हाँ, पुरुषों के टीम स्पर्धा के पूल ए के मुकाबले में भारत ने चीन को 3-0 से हरा कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से सूरज चंद्रवीर वीर चोटरानी और वेलकल सेंथिल कुमार ने अपने अपने मुकाबले जीत कर शानदार सफलता दिलाई है, यानी शानदार भारतीय खेमे में जीत दिलाई है। पहले मुकाबले में सूरज चंद्र ने चीन के शौकीन डू को कड़े संघ

0: हर्ष के बाद 11-4, 11-2, 12-10 से हराया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद वीर चोट्रानी ने कोर्ट पर अपना दमखम दिखाया, दबदबा बनाए रखा। उन्होंने हाइजोन ली को लगातार 3 गेम में 11-5, 11-5, 11-3 से हराकर भारत की जो बढ़त थी 2-0 कर दी। और तीसरे मुकाबले में वेलन सेंथिल कुमार ने पोलिंग झोऊ को, जो उनके खिलाफ, जो उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ शानदार खेल दिखाया। वेलन ने यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन किया, वेलवन ने यह मुकाबला 11-3, 11-2, 11-4 से जीतकर भारत की झोली में 3-0 के ये जीत दिला दी। इस तरह भारतीय पुरुष टीम ने चीन के खिलाफ तीनों मुकाबले जीतकर क्लीन स्वीप किया और पूल ए में अपने अभियान को और मजबूती दी।
1: Let's now turn our attention to archery and the women's compound individual event, where India had two strong contenders in action today and Chikita Taniparthi has saved. So we begin the round of 32 while talking about Jyoti Sureka Venom, who got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. She produced a strong performance to take the match 148 and 145 moving into round of 16, but the next challenge was a tough one. In the round of 16, Jyoti came up against Korea's Kang Yuen-soo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150, which brings her individual campaign to an end here. And now the focus shifts to Chikita Taniparthi, who has given us one of the most dramatic finishes of the day so far. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that context comfortably, winning 149-140. And then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off, and Chikita held her nerve when it mattered the most. She survives, she wins the shoot-off, and she is through to the quarterfinals. And the next challenge is already set. Chikita will be back in action in the quarterfinals on October 1st, where she will face Indonesia's Narusha Ashrifa.
0: बात शूटिंग की करते हैं। शूटिंग में भारत के लिए अच्छी खबर है। ट्रैप स्पर्धा में दूसरे दिन के मुकाबले में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला क्वालिफिकेशन में पहला स्थान हासिल कर लिया। वहीं भारतीय महिला टीम भी पदक की दौड़ में बनी हुई है। महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन में 4 राउंड और 100 शॉट के बाद नीरू ढांडा 95 अंकों के साथ शीर्ष पर है। भारत की मनीषा किर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत भी 84 अंक के साथ 23वें स्थान पर बनी हुई है। वही टीम की बात करें, टीम स्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर। वहीं पुरुषों की बात कर लेते हैं, पुरुष ट्रैप में शपथ भारद्वाज 95 अंक के लेकर 5वें स्थान पर है। वहीं काइनन चेनई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर। यानी पुरुषों के लिए फिलहाल 5वां स्थान सुनिश्चित है।
1: And now we just have a medal event underway in Karachi, where India's Pinky Balara is on the mat in the women's 78kg semi-final, taking on South Korea's Myo Soo-min.
0: बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद ईशा सिंह 25 मीटर पिस्टल में एक्शन में नजर आएंगी, फाइनल मुकाबला खेलेंगी। फिलहाल अब तक की अपडेट में यहीं तक। मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी विदुषी बस को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: आप सुन रहे थे एशियन गेम्स के अपडेट्स दिल्ली से। अब हम फिर एक बार नमस्ते भारत में हमारे कार्यक्रम में बात करेंगे बेला सुलाखे जी से। बेला जी
4: जी,
3: हम आपसे जानना चाहेंगे, हेमचंद प्रकाश जी हो, हुसनलाल भगतराम हो, या उस जमाने के ऐसे कई सारे संगीतकार जिनके संग शुरुआती दौर में लता जी ने बेहद काम किया, बट एक आएगा आने वाला के बाद वो जितनी मशहूर हो गई, उसके बाद कई सारे संगीतकारों में लता जी की आवाज़ की प्रतिभा को जाना और अपने संगीत में उन्हें एक बहुत अच्छा मौका दिया, उसमें नौशाद जी भी रहे, सी रामचंद्र जी रहे, या फिर रोशन जी, हयाम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन संगीतकारों के बारे में और लता जी की गायकी के बारे में?
4: हर किसी ने लता जी का इतना बखूबी इस्तेमाल किया उनकी आवाज का कि नौशाद साहब ने क्लासिकल बेस्ड गाने उनसे बहुत सारे गवाए, जैसे मुगले आजम है, बहुत सारे, मतलब मैं अभी एक ही संगीतकार को लेके बैठूं तो पूरा प्रोग्राम एक ही संगीतकार के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन इतने सारे संगीतकार हैं, हेमंत कुमार है, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, सी रामचंद्र, रवि जी, रविंद्र जैन,

0: मतलब लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन हर किसी ने लता जी से इतने अच्छे अच्छे गाने गवाए हैं। और लता जी की एक खूबी भी थी कि वो हर किसी के संगीत के और म्यूजिक में ढल जाती थी, और हम भूल जाते थे कि लता जी पर्दे पे गा रही है, पर्दे पे कोई और गा रहा है। लता जी अपनी आवाज को उस तरह से ढाल लेती थी, जैसे मीना कुमारी के लिए गाती थी तो वो मीना कुमारी ही गा रही है ऐसा लगता था, मधुबाला गा रही है तो मधुबाला गा रही है ऐसा लगता था। जैसे आपने वो गाना नौशाद साहब का संगीत बद किया हुआ पाकिजा, नौशाद साहब के साथ मेरे ख्याल से उसमें एक और संगीतकार भी थे, मुझे अभी एक नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलो दिलदार चलो ये डुएट था रफी साहब के साथ, लेकिन वो जब उनकी लाइन आती है चल हम है तैयार चलो, ये लाइन लगता था जैसे मीना कुमारी खुद गा रही है, उनकी आवाज में जो थकान थी वो मीना कुमारी की आवाज थोड़ी सी अलग थी, तो ये उनकी ये लाइन अगर आप गौर से सुने तो लगता है जैसे कि मीना कुमारी आपकी आंखों के सामने आ जाती है।
1: जी जी, और लता जी को अक्सर उनकी घबराहट से बाहर निकालने के लिए नौशाद साहब ने काफी हिम्मत भी जुटाई, ये भी सुनने मिलता है ना, घंटों रियाज भी करवाया और ये कहा था
0: हिंदी का उच्चारण, उनका उर्दू और हिंदी के उच्चारण में उन्होंने बहुत मदद की।
1: जी जी,
0: साथ हेमंत कुमार ने भी उनके साथ इतने अच्छे अच्छे गाने बनाए, जैसे कुछ दिल ने कहा जिस गाने के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, वो गाना जैसे लता जी का खुद अपना भी फेवरेट था, हर शो में वो गाती थी। मुझे लगता है उस गाने का पिक्चराइजेशन भी इतना अच्छा हुआ है कि वो एक लड़की अकेली एक नेचर के बीच में अकेली गा रही है, और ऐसा गाया है लता जी ने कि वो गाते हुए जैसे हम लोग विस्परिंग होता है ना, कि हमारे गाने से किसी पत्ते पे भी कोई खरोच ना आए, कोई मतलब जैसे वो एक जैसी हवा बह रही है, झरने बह रहे हैं, फूल हिल रहे हैं, वैसी उनकी आवाज भी चल रही है।
1: जी जी जी,
0: ऐसा
1: जी,
0: गाया है वो, मतलब वो गाना एक आपको किसी और दौर में ले जाता है। तो ये गाना अगर हो सके तो जरूर सुनाइएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्सो। तो गाने इतने सारे हैं, और लता जी की गायकी के बारे में मतलब मेरे पास कोई नए शब्द नहीं है कि मैं तारीफ और करूं, बहुत लोगों ने, बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने, गीतकारों ने उनके बारे में इतना अच्छा अच्छा बोला है कि मैं सिर्फ ये कह सकती हूं कि इनके ये गाने सुनिए और आप ही देखिए कि क्या कमाल करती थी।
1: क्या बात है, यही कमाल आपकी रिक्वेस्ट के खातिर हेमंत कुमार जी ने कंपोज किए इस गाने की ओर हमें ले जाता है कुछ दिल ने कहा। बने रहना एफएम रेनबो पर,
0: और दुनिया में ले जाएगा ये गाना।
1: जी जी जी जी, आपका मनमीत आरजे अमित के संग नमस्ते भारत में।
2: कुछ दिल

0: बेला जी, हमारे कई सारे श्रोताओं की चाहत है कि दो लाइनें आप भी गुनगुनाएं, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, दो हंसों का जोड़ा इस गाने का कुछ देर पहले हमने नौशाद जी के कंपोजिंग में जिक्र किया था, तो क्या आप उस गाने की या नौशाद जी के कंपोज किए किसी भी गाने की कोई धुन सुनाएंगे?
1: जी जरूर। दो हंसों

0: रे
1: आप
0: क्या गाना था, क्या, कितना क्या? प्यारा लिखा था, उसको गाया भी उन्होंने इतने इनोसेंस के साथ, प्यार के साथ। मतलब आप सुनते हैं तो आपके आप उसी जमाने में चले जाते हैं। लता जी के क्या कहें,
1: क्या कहने, क्या कहने। मैं तो यही कहूंगा, गुलाम अजहर साहब का कहना था ना कि कमबख्त कभी भी गलती से भी बेसुरी नहीं होती। मतलब एक संगीतकार ने दी हुई कॉम्प्लीमेंट
0: ने कहा था, बड़े गुलाम लिखा साहब ने ये कहा था कि वो हमेशा मतलब सुर में रहती है। मैं तो ये अपने मुंह से कहूंगी भी नहीं क्योंकि बाप रे, उन्होंने शंकर जय किशन के लिए भी जो गाए गाने, राज कपूर साहब ने जो बरसात फिल्म का निर्माण किया उसमें सारे गाने लता जी के थे। एक एक फिल्म में इतने सारे गाने, वहां से लता जी जो छा गई थी। और आर के शंकर जय किशन और लता जी, इनका मतलब एक इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता था।
1: करेक्ट करेक्ट,
0: ऐसे कमाल के गाने, ऐसे ऐसे गाने दिए। फिर उसके बाद उनके साथ साथ एस डी बर्मन साहब ने भी बहुत बढ़िया गाने दिए, उनके जैसे गाइड की गाने
1: जी,
0: किया तो से नैना लागे रे, मोसे छल किए जा, फिर रुला के गया सपना, जुएल थीप के गाने, रंगीला रे, और फिर अभिमान के नदिया किनारे, क्या गाना था, कितना प्यारा गाना। एक एक क्लासिकल सीखने वाली अदाकारा जो पर्दे पर जया जी ने निभाई, वो अपने आप अकेली बैठ के अपना संगीत का अभ्यास कर रही है और तब ये जो गा रही है, नदिया किनारे हेराए आई कंगना, नदिया किनारे हेराए आई कंगना। वाह वाह, आज मैं नहीं गा, अभी नहीं गाऊंगी ज्यादा, पर ऐसे कमाल के गाने इन्होंने दिए। फिर आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रवि साहब, रविंद्र जैन साहब, कितनों के नाम,
1: मदन मोहन जी का जिक्र तो होना चाहिए ना।
0: वो उनके बगैर तो लता जी का मतलब क्या कहें, वो एक अलग ही कॉम्बिनेशन था। उन्होंने एक अलग ही गजल को एक अलग ही रूप दे दिया। हम आगे उसके बारे में बात करेंगे।
1: लग जा गले की दो पंक्तियां गुनगुनाई है, फिर मैं खयाम जी ने कंपोज किया बाहरों मेरा जीवन भी सवारों सुनाऊंगा।
0: ओ जरूर जरूर जरूर
1: जी।

क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आज ये समा, ये सफ़र यूं ही जारी रहे ऐसी हमारी कामना है, मगर हमारे पास बस 11 बजे तक समय है। हम चाहेंगे एक बार और बेला जी से गुफ्तगू करें अगले संगीतकारों के बारे में और लता जी के बारे में हम जान लें। तब तक सुनिए ये गीत, लता जी की आवाज़ में गाया, खयाम जी ने कंपोज किया, फ्रॉम द फिल्म आखिरी खत, कैफी आज़मी के बोल हैं।

0: मैं तो कहूंगा कि लता जी ने इस कदर गाया कि हमारा जीवन वो संवार गई, है ना बिला जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सच कहा आपने।
0: कैफी आजमी साहब के बोल लता जी की आवाज में ऐसे लगते हैं ना कि ऐसे लगता नहीं फिल्म का गाना है, ऐसे लगता है कि वो हमसे कुछ कह रही है। देखिए विभिन्न संगीतकारों के लिए जब वो गाती रही तो हर शायर की लिखावट को वो हमसे कहती रही, ऐसे ही हमें महसूस होता है, है ना?
1: बिल्कुल, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब। आनंद बख्शी साहब के गीतों ने उन्होंने इतना कमाल कर दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तो इतने, उनका पूरा करियर में उन्होंने, वो हमेशा कहते थे कि लता जी का साथ हमारे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था, और ऐसे गाने दिए हैं जैसे कि एक अलग ही गाना था, आप मुझे अच्छे लगने लगे।
0: गुनगुनाइए जरा।
1: आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने

0: ऐसा नटखट और इतना उसमें एक्टिंग के साथ गाया है कि हम भूल जाते हैं कि लता जी गा रही हैं।
1: क्या बात है, आपको पता है
0: कितने सारे सुनो सजना, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, अखियों के झरोक अखियों को रहने दे, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, मेरे बीच में, माय गॉड, मतलब आप सत्यम शिवम सुंदरम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का तो एक पूरा जो 70s के बाद का एरा है वो छाई रही।
1: यस, मैं
0: बर्मन साहब
1: पंचमदा, यस यस पंचमदा के संगीत में
0: के साथ आशा जी का नाम जुड़ा हुआ है। आशा जी के साथ उन्होंने कमाल के गाने बनाए, लेकिन आर डी बर्मन और लता जी का जो एक अलग ही कॉम्बिनेशन रहा, जिसमें बाहों में चले आओ, आजा पिया तो है प्यार दूं, रहना बीती जाए और ना कोई उमंग है।

0: माय गॉड क्या गाया है उन्होंने, बाप रे
1: बहुत।
0: फिर मेरे नैना सावन भादो, मतलब गाने तो मैं क्या बताऊं, इतने सारे गाने याद आ जाते हैं। फिर जयदेव साहब के लिए अल्लाह तेरो नाम गाया, तू चंदा मैं चांदनी, जो राजस्थानी फोक पर बेस्ड गाना था।
1: जी जी जी।
0: फिर खयाम साहब के गाने तो अभी आपने सुनाए,
1: यस
0: इतने
1: यस।
0: नाम ले, मदन
1: अब देखिए रोशन साहब या उनके बेटे राजेश रोशन का जिक्र करें तो दोनों के लिए गाने वाली गायिका रही हैं, दो जनरेशन के लिए,
0: दोनों जनरेशन। फिर अब एआर रहमान तक वो गा के गई हैं।
1: जी जी जी।
0: एआर रहमान के लिए उन्होंने लगान के लिए गाया, फिर दिल से के लिए गाया।
1: मैं
0: ऐसा गाया कि वाह वाह वाह।
1: मैं आपकी सराहना करते हुए एक बात कहना चाहूंगा, आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये हमारे सारे श्रोताओं का कहना है आपकी आवाज सुनकर। स्नेहा श्रीधनकर वर्ली से हमें मैसेज करती हैं, विजेंद्र घटोल अकोला से, राकेश जी माथुर पुणे से, यशवंत आडमुटे जी हैं धाराशिव से, और दीपाली शिरोडकर हैं, दीपा पालकर जी हैं। एक मैसेज तो हमें नीदरलैंड से आया है देव प्रकाश जी का, जो कि आपके आवाज से काफी मुतासिर हुए हैं। प्रणव शिंदे जी हैं, महेश भाटकर, आकाश मनोज सिन्हा जी अहमदाबाद से, पंकज जी मोहड़ से, शुभलक्ष्मी मस्तकार रियासत सिद्दीकी उत्तराखंड से। देखिए इतने सारे लोग आपकी आवाज पर दिल हार बैठे हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नमस्ते इंडिया को कहना चाहूंगी, नमस्ते भारत को, कि आपकी वजह से मैं इन लोगों तक पहुंच पाई, इनसे जुड़ पाई और लता जी की बातें शेयर कर पाई।
1: जी जी जी,
0: थैंक यू अमित जी।
1: मुझे पता है एक घंटे में लता जी का ये सब्जेक्ट और काफी संगीतकारों के संग उनका तालमेल ये कंप्लीट करना नामुमकिन है, मगर फिर भी
0: मतलब ये सागर को गागर में भरने वाली बात हो रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हम चाहते हैं आप कीमती समय में से वक्त निकालकर हमारे संग जुड़ी, तो आपका हम शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया
0: सर। एनी टाइम लता जी के लिए कभी भी आप बुलाएं, लता जी क्या बस आपके सारे श्रोताओं से जुड़ने के लिए मैं कभी भी हाजिर हूँ। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू सो मच।
0: और फिर एक बार लता जी की आवाज ऐसे ही गूंजती रहे, हम सबके दिलों पर राज करती रहे, हमारे बाद भी आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करती रहे और उनसे सीखती रहे।
1: जी जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेला जी, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच।
1: आप सुन रहे थे बेला सुलाखे जी से ये मेरी बात, गपशप विद आरजे अमित। इस सेगमेंट में नमस्ते भारत इस कार्यक्रम को विराम देते हैं इस आखिरी गाने के साथ। ठीक 11 बजे आप समाचार सुन पाएंगे और समाचार के उस पार हमारी अगले आरजे किरण माला आप सभी से गुफ्तगू करेंगी। तब तक लिए मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी हमारी अगले शो में मुलाकात होगी। तब तक लिए बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन कल तिरुवनंतपुरम में श्री उथाराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के 15वें स्नातक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पिछले 12 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए श्री CP राधाकृष्णन ने बताया कि पहले जहां नई दिल्ली में केवल एक एम्स था, वहीं अब 12 नए एम्स स्थापित किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। वे AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब तथा नेपाल के समक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगी। आज से शुरू होने वाली तीन दिन के देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। देश आज शहीद ए आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

लगता है कार्यक्रम ब्रेक फ्री का। मैं हूं आरजे किरण माला, इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपका हमारा साथ बना रहेगा ठीक 2 बजे तक, तो सुनते रहिए FM रेनबो। और चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

11:09 हुए हैं और कार्यक्रम ब्रेक फ्री की शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों, आज के दिन एक खास बात है जिसके बारे में बताना जरूरी है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेबीज डे यानी विश्व रेबीज दिवस मनाया जा रहा है। अक्सर हमें ऐसे समाचार मिलते रहते हैं कि किसी कुत्ते ने किसी इंसान को काट लिया और वो रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया। वैसे डॉग्स ऐसे प्राणी हैं जो बरसों से हमारे समाज में हमारे साथ रह रहे हैं। हमेशा से कुत्तों को बहुत ही वफादार भी माना गया है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे में हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम सुनते हैं एक गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में ही, और साथ दिया है साथियों ने।

0: कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।
2: ग्यारह बजकर 22 मिनट हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फ्री। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेबीज डे यानी विश्व रेबीज दिवस मनाया जा रहा है। अक्सर हमें ऐसे समाचार मिलते रहते हैं कि किसी कुत्ते ने किसी इंसान को काट लिया और वो रेबीज जैसे खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया। ऐसे में हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हम रेबीज के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर डॉग्स के काटने की वजह से ये वायरस फैलता है, लेकिन कभी कभी बिल्ली, बंदर या चमगादड़

काटने की वजह से भी ये वायरस फैल सकता है। अगर आपको ऐसा कोई प्राणी काट लेता है तो अपने घाव को साबुन और बहते हुए पानी से 15 मिनट तक लगातार धोएं और उसके बाद जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलकर एंटी रेबिस वैक्सीन ले लें।

इस समय ठीक 11:28 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो और कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जा रहा है। 2026 का थीम है स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यानी हिंदी में कह सकते हैं कि साथ रहेंगे तो ज़्यादा मजबूत होंगे। आज ही के दिन वर्ल्ड रेबीज डे क्यों मनाया जाता है, इसकी भी एक खास वजह है। जिस महान वैज्ञानिक ने रेबीज के वैक्सीनेशन की खोज की थी, आज उनकी पुण्यतिथि है, लुई पाश्चर। इस वैक्सीन के आगे आने से पहले कुत्तों के काटने से मरने वाले इंसानों की गिनती बहुत ज़्यादा थी, लेकिन महान वैज्ञानिक की इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। खास बात यही है कि अगर कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो जल्दी से जल्दी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन ले, सुरक्षित रहें, खुश रहें, जिंदगी बहुत कीमती है।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Welcome back to the Asian Games live update where the nerves are high and the latest action has kept us right on the edge of our seats. I am Vidushi Watts with Mohammad Shahid Azmi bringing you all the latest twists, turns and medal moments from Asian Games. And what a moment we have to begin with. India has struck silver in shooting and it is Aisha Singh who has done it for us. What a spectacular contest this has been. Shoot off after shoot off, the pressure kept mounting, the margins kept getting finer, but Aisha held her composure and kept her focus right till the very end. A brilliant performance, a brilliant medal, and another moment of pride for the Indian contingent. Shahid, please take us through that incredible contest and Aisha Singh's journey.
2: बिल्कुल विदुषी, बताना चाहूंगा, नर्व्स को बिल्कुल दिलों की धड़कन को रोक देने वाला मुकाबला था। असली शूटिंग, जबरदस्त शूटिंग देखने को मिली और ईशा सिंह ने क्या अपने नब्ज पे काबू रखा था। एक वक्त लग रहा था एलिमिनेट हो जाएंगे, एक वक्त लग रहा तीसरे पर आएंगी और अंततः तक दूसरे स्थान पर रहती। भारत की स्टार निशानेबाज ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया। फाइनल में ईशा सिंह और चीन की शाओ जियू शुआन के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और दोनों बार शूट आउट तक मुकाबला पहुंचा। दूसरे शूट आउट में ईशा आखिरी शॉट नहीं लगा सकी, जिसके बाद चीन की शाओ ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। ईशा ने रजत पदक के साथ भारत की निशानेबाजी के जो पोटली है उसमें एक और पदक डाल दिया। इससे पहले के मुकाबले के बारे में बता दूं, वो भी बेहद रोमांचक मुकाबला था जो दूसरे और तीसरे स्थान के लिए खेला गया। वहां ईशा ने किम हॉन सुंग को 3 शूटआउट के बाद हराया। दूसरे शूटआउट में ईशा 3-2 से आगे थी लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मैच रोकना पड़ा। उसके बाद तीसरे शूट आउट में ईशा ने जीत दर्ज करते हुए फाइनल में गोल्ड और सिल्वर के लिए मुकाबले में पहुंची। वहां पर जिस तरह से देखा हमने, बहुत टाइट मुकाबला था, ईशा ने सिल्वर मेडल हासिल किया।
1: What a spectacular display of sport that was, you know, the immense pressure, margins, my God. It was truly a sight of delight. And that wonderful performance in shooting fresh in our mind, let's also tell you about another medal for India from the Kurash Arena, where Pinky Bulhara secured bronze in the women's under 78 kilogram category. She was in action in the semi-final today against South Korea's Moo Soo-min and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garam 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semi-finals and securing a medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is the only India's third ever Asian Games medal in this

0: spot. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at the 2018 Asian Games, while at the 22 ones, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. And it is also important to remember that just yesterday, four of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
1: बिल्कुल, मुक्केबाजी से भी सुबह अच्छी खबर आई. जैसा कि कल हमने देखा, तीन भारतीय मुक्केबाज उन्होंने फाइनल में, सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का कर लिया. हालांकि सेमीफाइनल में वो खिलाड़ी जीतते हैं तो पदक का रंग और अच्छा होगा, लेकिन आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहाइन, जिनसे उम्मीद भी थी कुछ शानदार प्रदर्शन करेंगी, और अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया. 5-0 से अपना जो मुकाबला था, क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, वहां पर जो दक्षिण कोरिया की मुक्केबाज थी स्वेन सोइंग को हराकर जीत दर्ज कर ली. उन्होंने एक और पदक पक्का कर लिया. हालांकि जिस तरह से शूटिंग में हमने देखा पदक आया, उसके बाद एक और मेडल आया जैसा विदुषी ने बताया, अब यहां पर मुक्केबाजी से एक और पदक पक्का हो गया. जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, शाम तक मुकाबला पहुंचेगा, एशियन गेम्स के मैच खेले जाएंगे, भारत की और स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी.
0: एब्सोल्युटली, इट हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉर्निंग फॉर द इंडियन कंटिंजेंट सो फार. एंड व्हाइल वी रैप अप दिस अपडेट, लेट्स गिव यू अ क्वाइट अपडेट फ्रॉम टेनिस एज वेल, वेयर इंडियाज वुमेन्स डबल्स कैंपेन हैज केम टू एन एंड. रुतुजा एंड अंकिता, द 8th सीडेड इंडियन पेयर, फेस्ड कजाकिस्तान इन द फर्स्ट राउंड. इट वॉज रियली क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट. इंडिया टुक द ओपनिंग सेट 7-5, बट Kazakhstan fought back strongly to take the second set 6-3. That meant the match went into a deciding match tiebreaker, and unfortunately for India, Kazakhstan held their nerve to win 10-5. So the final score reads as 7-5, 3-6, 5-10. And for now, keep listening to Akashwani for the latest updates from the Asian Games. This is Vidushi Vats with Mohammad Shahid Azmi, and we will be back with more thrilling action in our next early update. Thank you.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

11:40 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो और कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री। तो दोस्तों, इंदौर को भारत के सबसे ज्यादा क्लीन सिटी का दर्जा मिल चुका है, आप सभी जानते हैं। अगर आप कभी इंदौर गए हैं तो आपने इस बात को जरूर महसूस किया होगा कि वाकई ये शहर बहुत ही साफ सुथरा है। लेकिन एक बात और है जिसके लिए इंदौर को हमेशा याद किया जाएगा। आज ही का दिन था, यानी 28 सितंबर, और साल था 1929। इंदौर में एक महान हस्ती ने जन्म लिया था जिनकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। अगर वो नहीं होती तो फिल्मी दुनिया का गीत संगीत अधूरा रह जाता। हम बात कर रहे हैं महान गायिका, भारत के स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको लता जी के गाने सुनवाएंगे और कार्यक्रम म्यूजिक कैफे में भी हम लता जी के ही गाने सुनेंगे। साथ ही हिट एंड कार्यक्रम हिट एंड हॉट में भी आप लता जी के गानों की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

11:51 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। जब लता जी फिल्मों में आई तो उस समय नूरजहां और शमशाद बेगम जैसे गायिकाओं की भारी आवाज को पसंद किया जाता था। तब फिल्मी दुनिया के लोगों ने कहा कि लता जी की आवाज बहुत पतली है, इतनी पतली आवाज लोग पसंद नहीं करेंगे। वो लता जी के लिए काफी मुश्किल समय था। तब एक बार उस समय की मशहूर स्टार सिंगर नूरजहां ने कहा था कि एक दिन लता मंगेशकर बहुत बड़ी सिंगर बनेंगी। मशहूर संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने भी यही कहा था कि आज लोग इस लड़की की आवाज़ पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि निर्माता, निर्देशक और बड़े बड़े संगीतकार इस लड़की से अपनी फिल्मों में गाना गाने की रिक्वेस्ट करेंगे। नूरजहां और गुलाम मोहम्मद के शब्द पूरी तरह से सच साबित हुए। लता मंगेशकर भारतीय फिल्म संगीत की सबसे बड़ी स्टार बनी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जैसा ना कोई था और ना ही कभी होगा।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। भारत ने पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादी ठिकानों पर किए सर्जिकल स्ट्राइक को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुई उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। बैंक कर्मचारी संगठनों ने 3 दिन के देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी है। डॉक्टर से मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे को मुंबई उच्च न्यायालय ने दी जमानत को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दी है। राज्य सरकार ने मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। समाचार के अंत में, भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने एशियाई खेलों की महिला 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। रोमांचक शूट ऑफ मुकाबले में उन्होंने एशियाई खेलों के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आरजे किरण माला इस समय आपके साथ, और ये समय होता है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे का। और आज हम इस कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे लता मंगेशकर की मधुर आवाज में गाए हुए बेहतरीन गाने। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

12:08 हुए हैं और कार्यक्रम म्यूजिक कैफे की शुरुआत हो गई है। अगर लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं आती तो हम और आप कितने सारे खूबसूरत गीतों से वंचित रह जाते। फिल्म संगीत का एक इतना बड़ा सितारा जो हमेशा चमकता रहेगा, उनकी आवाज़ बेमिसाल थी, उनका गाने का अंदाज लाजवाब था। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि लता जी को कितने बड़े बड़े पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

इस समय ठीक 12:15 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे। साल 1972 में फिल्म आई थी परिचय। इस फिल्म के डायरेक्टर थे गुलजार साहब। इस फिल्म में एक गाना था बीते ना बिताए रहना। संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और ये गाना फिल्माया गया था जया भादुरी पर। इस गाने के लिए लता जी को पहली बार भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। चलिए सुनते हैं यही गाना।

कलाकार था, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम समय में गाना रिकॉर्ड कर दिया और चली गई। इस गाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये गाना भी जया भादुरी पर फिल्माया गया था। तो चलिए सुनते हैं यही गाना।

12:22 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। साल 1991 में फिल्म आई थी, लेकिन इसके लेखक और डायरेक्टर थे गुलजार साहब। फिल्म के कलाकार थे विनोद खन्ना, डिंपल कापड़िया। फिल्म का संगीत दिया था लता जी के सगे भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने, और फिल्म की निर्माता थी खुद लता जी। इस फिल्म का एक गाना था यारा सीली सीली, सुपरहिट हुआ था। इस गाने के लिए भारत सरकार ने लता जी को तीसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। वैसे इस गाने को लिखने के लिए एक गीतकार के तौर पर गुलजार साहब को और इस गाने के संगीत के लिए हृदयनाथ मंगेशकर को एक संगीतकार के तौर पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया था। 1989 में लता जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये पुरस्कार उन्हें फिल्म संगीत में एक सिंगर के तौर पर उनके योगदान के लिए दिया गया। 2001 में उन्हें भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया, यानी भारत रत्न। भारत रत्न हासिल करना आसान नहीं होता है, लेकिन लता जी हकीकत में भारत की एक रत्न थी।

एक नायाब हीरा थी, एक ऐसी हस्ती जो इस दुनिया में कभी कभी पैदा होती है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें को एक बार फिर से कोटि कोटि नमन करते हैं। तो चलिए सुनते हैं लेकिन फिल्म का यही गाना।

0: भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज से होती है।
1: अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: वेलकम बैक टू योर एशियन गेम्स लाइव अपडेट वेयर इंडिया हैज ऑलरेडी गिवन अस सम वंडरफुल रीजंस टू सेलिब्रेट दिस मॉर्निंग। आई एम विदुषी वत्स विद मोहम्मद शाहिद आजमी ब्रिंगिंग यू ऑल द लेटेस्ट एक्शन मेडल मोमेंट्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स फ्रॉम द गेम्स। एंड व्हाट अ मॉर्निंग इट हैज बीन फॉर इंडिया। वी हैव सीन एशा सिंह डिलीवर अ ब्रिलियंट सिल्वर मेडल इन शूटिंग फॉलोड बाय पिंकी बलहारा एडिंग अ ब्रॉन्ज इन कुराश, टू मोर पोडियम फिनिशेज, टू मोर मोमेंट्स ऑफ प्राइड and the Indian medal tally continues to grow. It has been a morning full of intensity, composure and some truly memorable performances from our athletes. Shahid, let's begin by taking stock of where India stands right now. What does the medal tally look like?
2: बिल्कुल, भारत 12वें स्थान पर है। भारत ने 4 गोल्ड, 17 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज समेत 39 पदक जीते। इन 39 पदक में एथलेटिक्स ने 13 पदक दिए जबकि शूटिंग ने 12 पदक दिए, यानी 12 13 25 पदक इन सिर्फ दो खेलों से भारत को मिले हैं। जबकि अगर बता दें, ओवरऑल बताएं, सबसे ऊपर चीन अभी भी बना हुआ है, 125 गोल्ड, 51 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज समेत 220 पदक जीते। वहीं जापान 39 गोल्ड, 64 सिल्वर, 61 ब्रॉन्ज समेत 164 पदक जीते हैं। वहीं कोरिया की बात करें, 21 गोल्ड, 26 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज समेत 90 पदक जीते। कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जिसके 10 गोल्ड थे, अब 9 गोल्ड हो गए। कैसे हो गए बताता हूं आपको। हालांकि आमतौर से देखा जाता है, हर देश जब मुकाबला जीतता है उसकी संख्या, जो उसके पदकों की संख्या बढ़ती है, लेकिन उसके घट गए। कैसे घटे बता देता हूँ आपको। कजाकिस्तान की यास्मीन टोखान बोआ का महिला मैराथन रेस वॉक का परिणाम रद्द कर दिया गया है। यास्मीन ने 42.195 किलोमीटर की स्पर्धा में 3:22:20 के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन रेस के बाद उनके जूतों को लेकर विरोध जताया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने स्वीकृत जो फुटवेयर नियम के तहत जाँच के बाद उनका परिणाम डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी रद्द कर दिया। इसके बाद चीन की डांगजेंग कुंगजोंग को स्वर्ण पदक मिला। वहीं मा एल, जो चीन की ही खिलाड़ी हैं, उनको यहां पर रजत पदक मिला, जबकि जापान की उमेनो वाई को कांस्य पदक हासिल हुआ। वहीं भारत की मंजू रानी, जो छठे स्थान पर थी इस रेस को खत्म होने के बाद, उनका पांचवां स्थान हो गया। हालांकि भारत को इसमें कोई पदक नहीं मिलेगा।
1: This is precisely why we say all of these updates are full of twists and turns, because you never know what is going to come for you next. Just like this one, because now we're going to talk about the action that is continuing on the water as well, with Indian sailors competing across both men's and women's events and several races that are still underway. So starting with the men's skiff, India's Prince and Manu had a strong opening race, finishing second in race one, with Oman taking the top spot. Race 2 is currently underway, so there is still plenty to play for. And in the men's dinghy, Vishnu finished 9th in race 1 and 2 of the qualification series, with China leading the race and race 3 being delayed right now. Moving to the women's events, Harshita and Sheetal finished 4th in race 1 of the women's skiff, with Hong Kong, China taking the top position. Their race 2 is now underway as well. In the women's dinghy, Netra finished 6th in the opening qualification race, with Singapore at the top, and once again race 2 is currently running. And finally, in the mixed dinghy, Shraddha and Ravindra finished 8th in the race 3 of the opening series, with Japan taking first place. Race 4 is now on, so we are still waiting for the latest positions from the Indian pair.
2: आज क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी। भारत बनाम अफगानिस्तान का एक मुकाबला होने वाला था, जो बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। हालांकि भारत ने पिछला मुकाबला जापान से खेला था, आह और वाह का मुकाबला था, बड़ी मुश्किल से भारतीय टीम ने उस मुकाबले को जीता था। आज उम्मीद की जा रही थी, जब भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ उतरेगी तो एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा।

0: बारिश की वजह से रद्द हो गया मुकाबला, लेकिन अब भारत का सामना श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की जो विजेता टीम होगी उससे सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह भी बता दूं भारतीय टीम सेमीफाइनल में कैसे पहुंची, चूंकि वरीयता और रैंकिंग के आधार पर फैसला किया गया कि भारतीय टीम को आगे पहुंचाया गया और भारतीय टीम सेमीफाइनल उतरेगी। और हाँ, एक और जो दूसरा सेमीफाइनल होगा उसमें पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी पहले पहुंच चुकी है।
1: While we are giving you these updates, there are some action which is coming in live from the squash courts where the women's team match has started. The Pool C match number 3 between India and Japan has started, which is after their victory on China by 2-1 earlier today. So the next update that we will be coming to you in an hour, we will come with the results of the squash match which is just starting right now. Until then, stay tuned to Akashwani. This is Vidushi Vats with Mohammad Shahid Azmi bringing you all the latest updates from Asian Games. See you in an hour. Thank you very much.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूँ तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुँचा दिया
2: जी।
0: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताज़ा कर दी
2: जी।
0: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
2: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा

0: संख्या लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए। कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया।
1: जी।
0: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
1: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
0: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
0: हमारा अगला प्रश्न था बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है।
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम 2 ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है।
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
1: जी,
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माध।
1: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
3: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
2: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
3: आहा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
2: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
3: ए मेरी मांद, ए मेरी मांद।
2: पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
3: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
2: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
3: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
2: उसने सोचा,
3: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
2: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
4: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
0: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है।
1: देखते हैं।
2: और वो भी अचानक।
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे।
2: हाँ,
3: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं जा
5: रहा है
2: क्या मसला है।
5: ठीक है,
2: बिल्कुल बाहर
5: भगवान सब
2: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा।
6: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
2: शोक सूचना?
6: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
6: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
6: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
7: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
8: कैसे हमारे भाई?
2: बताओ तो
8: थापा जी कैसे हैं?
6: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
2: हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
8: कैसे समाचार?
6: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
4: अरे धन्य है, धन्य है हमारी गांव की माटी, किसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
8: अरे वो हमारा गौरव है,
7: हमारा गौरव है।
4: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
6: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी।
7: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: जब तक सूरज चांद रहेगा
9: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
4: भारत माता की
9: जय।
4: भारत माता की
9: जय।
10: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
11: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
10: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है, गांव का नाम है सुरम्य।
11: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
10: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
4: ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले,
11: आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
10: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
0: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
1: जय हिंद।

0: सिंह, हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
1: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
0: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
1: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
0: तुमने ठीक सुना है धन सिंह, हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
1: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने न पाए।
0: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
3: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है,
4: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। ठीक है, कि वो जल्दी से जल्दी सहायता दे।
3: पर इनको रोक के रखो।
4: हेलो हेलो, सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
4: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
4: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मारकर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो,
6: हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
7: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
6: ए सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे।
4: कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक और एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर। जय मां काली,
8: जय

युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा।

1:05 हुए हैं, तो चलिए कार्यक्रम हिट एंड हॉट की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ। मैं हूँ आरजे किरण माले से, मैं आपके साथ, और इस गाने को सुनना चाहते हैं शुभलक्ष्मी और साथ ही दीपा पालकर जी।

1:13 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो और कार्यक्रम चल रहा है हिट एंड हॉट। तो चले बढ़ते हैं अगले गाने की ओर और बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, यानी सुबह से ही हमारे सारे प्रोग्राम सुनते हैं। तो यहाँ पर एक श्रोता है जिनका नाम है विजेंद्र घटोल अकोला से। वो लिखते हैं कि वो सबके फरमाइश को इंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूब, थैंक यू विजेंद्र जी। तो बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। इस गाने को सुनना चाहते हैं, पहले ये गाना सुन लें क्योंकि नाम, हाँ हाँ जी हाँ, ये गाना सुनना चाहते हैं पंकज मोहोड़।

0: 1:19 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट। तो चलिए बढ़ते अगले गाने की ओर। इस गाने को सुनना चाहते हैं राकेश कुमार पुणे से और साथ ही हमारे पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोपा, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, इनका पूरा परिवार ये गाना सुनना चाहते हैं। तो हम ये गाना आपको सुनाएंगे। साथ ही मनीष बी पाटिल ये भी हमें सुन रहे हैं वाड़वन टिघरे पाड़ा से, मोगा पंजाब से भी हमें सुन रहे हैं जगदीश मठाड़ू, वीरपाल, गुरबख्श ये भी हमें सुन रहे हैं, और साथ ही चेतन कुमार गया से, संयोगिता चौहान इंदौर से, और फिरोज सिंगनपुरिया जी भी हमें सुन रहे हैं, राजेंद्र परमार जी भी सुन रहे हैं, हीरामणि वर्मा जी इनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है भाटपारा छत्तीसगढ़ से। तो चलिए बढ़ते हैं इस गाने की ओर।
1: हाँ? क्या कहा?

1:25 हुए हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। इस गाने की फरमाइश की है प्रणव शिंदे ने, फिल्म है वंश, लता मंगेशकर की आवाज़ में है, और साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अवरील सिंह, जो लिखते हैं कि कोई भी गाना में हमारा नाम शामिल कर दीजिए जी। थैंक यू, धन्यवाद। और साथ ही बढ़ते हैं एक और लिसनर की ओर, उन्होंने भी लिखा है कि हमारा नाम शामिल कर लीजिए। ग्राम तंगोरी, जिला मोहाली, पंजाब से गुरमीत सिंह, जसबीर कौर, महक प्रीत कौर, सहज प्रीत सिंह, जी हाँ, ये सभी हमें सुन रहे हैं। तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना, बहुत ही खूबसूरत है गाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। चलिए आज इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं स्क्वैश से बात करते हैं, जहां कांटे की टक्कर है, ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओमाहिल टीम स्पर्धा के पूल सी मुकाबले में भारत की जापान के बीच रोमांचक टक्कर है। भारत ने जोरदार शुरुआत करते हुए पहला मैच अपने नाम कर लिया, लेकिन जापान ने दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया है। पहले मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा ने जापान की एरिसा सानो को सीधे गेमों में 11-8 रनों से हराकर भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे मैच में अनाहत सिंह और सातुमी वतानबे के बीच जो ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला, संघर्ष देखने को मिला, उसके बाद वहाँ अनाहत को 5 गेम तक चले मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब मुकाबला 1-1 से बराबर पर है। तीसरे मैच पर सभी की निगाहें, क्या तन्वी खन्ना जापान की अकारी मिदुरिबकोवा को हराकर वापसी करती हैं, भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाती हैं। आने वाला कुछ वक्त बता देगा, लेकिन हाँ यकीनन ये मुकाबला बेहद ज़बरदस्त चल रहा है। अनाहत सिंह को जिस तरह यहाँ से शिकस्त मिली है, मुकाबला और ज़्यादा रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुँच गया है।
2: Absolutely, the events today are promising that thrill. They are promising that action that we look forward to when sports come into the play. But what is more promising is that there is plenty more action coming up for India as we move into the second half of the day. The excitement is really building, especially with a packed evening of athletics ahead. Let me give you a little overview of what is coming up for us. So we begin at 2 p.m. with squash, where India takes on South Korea in the men's team event in Pool A. Now after that we go with boxing, where Priya taking on her quarter final in the women's 60 kilogram category. And at 4 p.m. it will be Kapil in action in the men's 90 kilogram category. So there is plenty at the stake in the boxing ring this afternoon. After that is when the athletics program really take off at 2:35, where we have Seema and Sun in the women's discus throw final, followed by the women's 400 meter hurdles final at 3:53, and where Vithya Ramraj and Anu will be looking to make their mark. After that we turn our eyes to Santosh Kumar in the men's 400 meter hurdles final, and then comes the men's 3000 meter steeplechase with Avinash on the start list. But the excitement still keeps coming, where we have Murali Sri Shankar and Abdullah Abubakar listed for the men's long jump final at 4:30, followed by Gulveer and Yunus Khan in the men's 1500 meters. We also have Rohit and Yashvir in the men's javelin throw final, and then the women's 800 meter heats at 4:50, featuring Gautami and Pooja. The evening gets even bigger with the women's 5000 meter final, where Parul and Seema will be in action. And then, just when you think the athletic schedule could not get any more exciting, we have the relay events as well. India's men 4x400 meter relay team is scheduled today, followed by the women's 4x100 meter relay final as well. So from 2 p.m. onwards, it is going to be a packed sporting afternoon, evening, with squash and boxing leading us into what promises to be a massive athletic session.
1: जैसे ही शाम ढलेगी वैसे ही देखा जाएगा कि ट्रैक एंड फील्ड पर जबरदस्त जोरदार देखा जाएगा, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आज जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। आज जो मेडल भारत ने जीते उसकी भी बात कर लेते हैं। शूटिंग में बात करेंगे, ईशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत में रजत पदक जरूर जीता, लेकिन हाँ क्या मुकाबला था विदुषी, जबरदस्त मुकाबला था। 5 मरतबा शूट आउट तक मुकाबला पहुंचा था, शानदार मुकाबला हमने देखा। वहीं पर कुराश की बात करते हैं, पिंकी बलहारा महिलाओं की 78 किलोग्राम सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की मो सुमिन से हार जरूर गया।

0: लेकिन इसके बावजूद ने कांस्य पदक हासिल हुआ है। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सोन को हराकर पदक पक्का कर लिया, यानी भारत का जो जीत का सिलसिला वो लगातार आगे बढ़ रहा है।
1: Absolutely, it has been a morning full of intensity, composure and some truly memorable performances from our athletes. And as we just shared the schedule of the day that's upcoming, which is promising us excitement, a lot of excitement and thrill. With that, we will see you in our next update of the Asian Games. This is Vidushi Vats with Mohammed Shahid Azmi taking your leave right now. But see you real soon. Thank you.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

चलिए सुनते हैं इस टंक का ये आखिरी गाना, और इसी गाने के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे। सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गाना लता जी की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत है गाना, आप सभी के लिए दिल से।

0: in women's 25 meter pistol and under 78 kilogram kurash events. Details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
1: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल

राय की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में

0: आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बबदलाव लाने में मदद कर रहा है।
2: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
2: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
2: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
0: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
5: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
6: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
5: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
7: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

0: मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
1: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़क कर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की स्योंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Amadova in her quarterfinal bout, and she delivered a commanding performance, winning the contest 5-0, a unanimous victory, a place in the last four, and most importantly, another medal is now assured for the Indian contingent. Her semi-final is scheduled for September 30, so there is still another big challenge ahead.
1: स्क्वैश की बात कर लेते हैं। स्क्वैश में भारत कमाल कर रहा है। जापान के खिलाफ पहले बढ़त, फिर बराबरी, फिर आखिरी निर्णायक मुकाबले में शानदार जीत। जी हां, भारत ने स्क्वैश कोर्ट पर दम दिखा दिया है। भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने पूल सी के रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी है। पहले मैच में ज्योत्सना चिनप्पा ने एरिसा सानो को सीधे गेमों में 11-1, 11-8, 11-9 से शिकस्त दी। भारत को यहां 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे मुकाबले में अनाहत सिंह और सामोती वतानबे के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। अनाहत को 5 गेम तक चले मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा और जापान ने यहां पर स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। अब फैसला तीसरे और निर्णायक मैच पर पहुंच गया था। यहां तन्वी खन्ना ने दबाव के बीच शानदार संयम दिखाया और अकारी मुद्रिकोवा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से शिकस्त देकर भारत को 2-1 से जीत दिला दी। भारत का अब पूल सी में अगला मुकाबला 29 सितंबर को ईरान से खेला जाएगा।
0: Absolutely a strong finish for the Indian women in Pool C. And now let's look at the Indian men who are on court against the Republic of Korea with their Pool A match currently undergoing right now. So the first match has already been done, which was Vellavan Senthil Kumar, who has already given India the perfect kickstart that was needed. So he defeated Korea's Na Joo Young in straight games 11-6, 11-4, 11-7, which did put India 1-0 up in the team tie. And after that, it was a beautiful, beautiful dominating game by Abhay Singh, which has just ended. He has scored again a 3-on-3 straight victory. Amazing lead in all the games as 11-4, 11-7 and 11-1. Now in the next match, which is the third one, it's Veer Chotrani against Oh Seo-jin to finally settle us into this straight victory against South Korea. And of course, we will keep you updated as this contest develops.
1: विदुषी चलते हैं एथलेटिक्स के ट्रैक पर। वहां मिक्स 4x100 मीटर रिले के फाइनल में भारत पहुंच गया है, और पहुंचता क्यों नहीं। अनिमेश और हरित्रा ने जो पूरा दम लगाया, बिल्कुल हरिता भद्रा ने जो आखिर में दम लगाया, उससे भारत ने वहां पर शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की है। एथलेटिक्स ट्रैक में भारत के लिए बड़ी खबर यकीनी तौर पर है। मिक्स 4x100 मीटर रिले की हीट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 41.54 सेकंड का समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बना ली। भारत की शानदार दौड़ में अनिमेश कुजूर का तीसरा लेग बेहद प्रभावशाली रहा, जिसने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। फाइनल में भारत से एक और दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।
0: And now a quick update coming in from hockey that India's men was scheduled to take on Bangladesh in their Pool A encounter, but the match now has been rescheduled.
1: बिल्कुल, बात करते हैं महिला डिस्कस थ्रो के फाइनल मुकाबले की, जहां भारत की सीमा पुनिया एक मर्तबा ऐसा था तीसरे पायदान पे चल रही थी, ब्रॉन्ज मेडल की दौड़ में थी, अब चौथे पायदान में पहुंच गई है। चीन की दो खिलाड़ी फेंग बी और जियांग पहले और दूसरे स्थान पर। फेंग बी 63.69 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर, जबकि जियांग भी 62.25 मीटर का थ्रो लगा के दूसरे स्थान पर। वहीं थाईलैंड की इंसाएंग 61.43 मीटर का थ्रो लगा के तीसरे स्थान पर। वहीं सीमा पुनिया 59.88 मीटर के बाद तीसरे चौथे स्थान पर बनी हुई हैं। क्या होता है, क्या घटित होता है, अगले एक घंटे में हम अगले जो अपडेट हम लेके आएंगे 4:30 पर उसमें बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को अगले अपडेट तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।

0: 1858 साली राणीनं भारताचा राज्यकारभार आपल्या हातात घेतला. त्याची
1: एशियन गेम्स 2026 आयची नगोया.
2: वेलकम बैक टू योर एशियन गेम्स अपडेट वेयर द इंडियन फ्लैग इज बैक ऑन द पोडियम. आई एम विदुषी वत्स विद मोहम्मद शाहिद आजमी ब्रिंगिंग यू ऑल द लेटेस्ट एक्शन रिजल्ट्स एंड मेडल मोमेंट्स फ्रॉम द एशियन गेम्स. एंड व्हाट अ मोमेंट फॉर इंडियन एथलेटिक्स. विथ्या रामराज हैज डन इट अगेन. विथ्या हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स and she has done it in style, clocking a personal best with 54.75 in the final. But there is something particularly special about this medal. Withya had won bronze in the very same event at the 2022 games, and 4 years later she is back on the podium once again, bringing home a bronze for India. A personal best, back-to-back podium finishes, and another fantastic moment in Withya Ramraj's journey.
3: अब बात करते हैं एथलेटिक्स की. जहां से एथलेटिक्स के डिस्कस थ्रो से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई. भारत की सीमा के ने महिला डिस्कस थ्रो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 59.88 मीटर का थ्रो किया, लेकिन यह प्रदर्शन उन्हें पदक नहीं दिला सका. सीमा ने चौथा स्थान हासिल किया और कांस्य पदक से मामूली अंतर से चूक गई. चीन की फेंग ने 63.69 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन की ही जियांग ने 62.25 मीटर के साथ रजत पदक जीता. थाईलैंड की इनसियांग ने 61.43 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रही. सीमा के लिए यह प्रदर्शन इसलिए भी खास रहा क्योंकि उन्होंने एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. हालांकि उनका यह शानदार प्रयास पदक नहीं दिला सका. सबसे अहम बात बताता हूं आपको, 1998 के बाद

0: पहली बार एशियन गेम्स में भारतीय महिला डिस्कस थ्रो में कोई भी पदक नहीं जीत पाए, यानी 1958 से लगातार जीतते थे, ये पहली बार है जब भारतीय महिलाओं ने पदक डिस्कस थ्रो में नहीं जीता। सीमा ने पूरी कोशिश जरूर की लेकिन उन्हें पदक नहीं मिला।
1: But right now, let's bring you a big update that is coming in from the boxing ring, where Kapil Pokharia has stormed into the semi-finals of the men's 90 kilogram category, and what a performance it was! Kapil faced Korea's Gichae Kim in the quarterfinal, and this was clear domination from the Indian boxer. He controlled the bout from start to finish, leaving no doubt with the judges, and came through with a unanimous victory. A commanding performance, a clear result. And Kapil Pokharia is now through to the last four. With that semi-final berth, Kapil has also guaranteed a medal for India in the men's 90 kilogram category. Another Indian boxer, another semi-final, another medal confirmed.
0: 400 meter hurdles की बात करते हैं। भारत के संतोष कुमार तमिलरासन ने पुरुषों के 400 मीटर हर्डल्स फाइनल में निराशाजनक प्रदर्शन किया, बिल्कुल अफसोसनाक प्रदर्शन था। संतोष ने 49.95 सेकंड का समय निकालते हुए 8 खिलाड़ियों में सातवां स्थान हासिल किया। पूरी रेस के दौरान संतोष पदक की दौड़ में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। कतर के बासिम हेमेदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 47.82 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
1: Let's also bring in some good news to balance it. That is from the Indian men on the squash courts, who has completed a 3-0 victory over the Republic of Korea in their Pool A encounter, with all three Indian players delivering straight games wins. Starting from Velavan Senthil Kumar, then a clear domination by Abhay Singh, and then it was Veer Chautrani's turn to put the finishing touch on the contest, and he completely dominated, winning all three games. So there was absolutely no way back for Korea as India wrapped up the team tie 3-0.
0: हॉकी की बात करते हैं, भारत बनाम बांग्लादेश जबरदस्त मुकाबला। हालांकि भारत ने बढ़त बना ली है, पहले ही क्वार्टर में भारत ने अभिषेक लाकड़ा के गोल की मदद से बढ़त बनाई। हालांकि अभी 1-0 का स्कोर है भारत के पक्ष में। दूसरा क्वार्टर यहां पर जारी है, देखना यह होगा कि क्या यहां भारत कुछ और गोल करता है, दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल भारत बांग्लादेश पर बढ़त बनाया हुआ है।
1: Now a tough result coming in from the athletics track, where Avinash Sable has finished fourth in the men's 3000 meter steeplechase final, narrowly missing out on a place on the podium. And these Asian Games, as he is into Asian Games as defending champion, having won gold in the previous edition, but this time there will be no medal for India in this one, which is clearly disappointing. But the heat is about to turn up in the athletics arena with three high powered finals coming for us, with Murli Sri Shankar and David in men's long jump final, with Gulveer and Yunus in the men's 1500 meters final, and the men's javelin throw with Rohit Yadav and Yashveer Singh coming for us.
0: जी बिल्कुल, अगले एक घंटे में क्या होगा अगली अपडेट में जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए, अगले एक घंटे बाद फिर मुलाकात होगी ठीक 5:30 पर।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: विसाव्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांचे अपडेट्स आत्ताच आपण ऐकलेले आहेत, आणि पुन्हा एकदा आपण वळूया आपल्या कार्यक्रमाकडे, ज्याचं नाव आहे सांजे चपारी।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 5:02 हो रहे हैं और आपने ट्यून इन किया हुआ है 107.1 FM रेनबो। मैं सोनाली आपके साथ हूँ। सोमवार की शाम है और आज चूंकि पूरे दिन भर से ही एक म्यूजिकल जर्नी पे निकले हुए हैं आप, क्योंकि आज लता जी की स्मृति में सब लोग गाने प्ले कर रहे हैं, तो उस स्मृति को आगे बढ़ाते हुए मैं उन्हीं के का गाया हुआ गाना आपके लिए प्ले करती हूँ। आप बने रहिएगा मेरे ही साथ यानी 107.1 FM रेनबो पर। साथ साथ में अपने जो इस लव यू जिंदगी के साथ में कुछ और भी गाने हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच कहूँ ना तो लता जी के गाए हुए गानों की छाप हमारे दिल पे इतनी गहरी है कि कुछ और बजाने की कोशिश करने का मन करता है, लेकिन घूम फिर के हम फिर वहीं आ जाते हैं। चलिए लेकिन कोशिश करते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक गाना जो कहते हैं कि लता जी का गाया हुआ मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा गाना है, तो उस गाने के साथ हम शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे अपने अलग अलग अंदाज के साथ में। सुनते रहेगा 107.1 FM रेनबो। गुड इवनिंग।

ममता फिल्म का ये गाना रहे ना रहे हम महका करेंगे, रोशन साहब ने कंपोज किया हुआ, मजरू साहब ने लिखा हुआ और लता जी की पिच परफेक्ट आवाज में आपने अभी सुना। और क्या बोल लिखे हुए थे कि जब हम ना होंगे, और कहते हैं ना कि उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ है, और इस वजह से ना

उनका जाना अखरता तो है नेचुरली, क्योंकि एक इंसान जो जिसके माध्यम से आपने इतने सारे इमोशंस को महसूस किया है वो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनके इमोशंस जो उनकी आवाज़ के माध्यम से हम तक पहुँचे, वो इतने परफेक्ट है, इतने उनकी आवाज़ में वो लोच है, वो लचक है, वो इमोशंस हम तक पहुँचने की अदायगी है उस आवाज़ में, कि हमें लगता है कि जैसे वो आज भी यहीं कहीं है, हमारे आस पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करूँगी कि हर एरा के गाने में उनके गाए हुए प्ले कर सकूं, क्योंकि लता जी, मतलब लता जी की आवाज़ के माध्यम से हम सिनेमा का इतिहास समझ सकते हैं। जिस तरह से उनकी आवाज़, कहते हैं ना कि उन्होंने हर एक्ट्रेस के साथ जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है आवाज़ के माध्यम से। तो चलिए अगला गाने की तरफ बढ़ते हैं और प्ले करती हूँ आपके लिए ये वाला गाना, सुनिए, बने रहिएगा हमारे साथ में। अंदाज अलग है, एक्ट्रेस अलग है, लेकिन वो जो इमोशंस कन्वे करने की ताकत है वो बरकरार है।

0: दो एक ही तरह की फिल्में, मतलब आम्रपाली और चित्रलेखा, जिसमें नर्तकियां थी मेन लीड की एक्ट्रेस वैजयंती माला जी और मीना कुमारी जी, और दोनों के साथ ही जिस तरह से ये गाने बने हैं और उनके जो परफॉर्मेंसेस भी है खैर मूवीज़ के अंदर, तो ऐसा ये कहते हैं ना कि इन गानों के माध्यम से हम वो कैरेक्टर्स भी देख पाते हैं और कहीं ना कहीं हम एक अलग तरह का इतिहास भी देखते चले जाते हैं, और ये खूबसूरती उन आवाज़ों की है, उन अदाकारों की है जिनके माध्यम से हम ये सब कुछ देख पाते हैं। सिनेमा की कमाल है रादर सच कहिए तो। 5:21 हो रहे हैं। 8657661071 पर आप मुझे यानी सोनाली को सुन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों की आवाज़ें थोड़ी सी एक सी होती है तो मुझे ही कई सारे नाम दे दिए जाते हैं, सो बता देती हूँ कि कौन हूँ मैं आपके साथ में। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने इस म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और अब जो गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ वो कौन सा है सुनिए। इस गाने के साथ में ना जब भी हम कुछ सोचते हैं कि एक अंदाज अलग आएगा, तो वैसा ही कुछ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अलग अंदाज के साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले एक प्रोमो सुन लेते हैं। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो।
1: 1858 साली राणीनं भारताचा राज्यकारभार आपल्या हातात घेतला। त्याची स्मृती म्हणून वस्तू संग्रहालयाचं नाव व्हिक्टोरिया म्युझियम असं ठेवण्यात आलं, तर बागेला व्हिक्टोरिया गार्डन्स हे नाव देण्यात आलं।
2: या सैन्याच्या निवासासाठी जुन्या सैनिकी छावण्यात थाटलेला म्युझियमचा संसार 24 तासांच्या आत गुंडाळून ती जागा सैन्याच्या ताब्यात देण्याचा हुकूम सुटला। तिथल्या वस्तू टाउन हॉल मध्ये हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला।
1: इमारतीचे आराखडे अंतिम टप्प्यात असतानाच संग्रहालय

0: सेकेंड के पर्सनल बेस्ट टाइम के साथ रेस पूरी की। बेहद करीबी मुकाबले में जापान के काजुतो इज़ावा ने 3:36.35 से एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया, जबकि जापान के ही नागिया मोरी ने 3:37.92 के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारत के एक और धावक यूनुस शाह 3:43.88 के साथ नवे स्थान पर है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और अब गुलवीर सिंह ने उसे सिल्वर मेडल में बदल दिया, यानी पदक का रंग बदल दिया है।
1: And now we have another athletics medal update live coming in from the women's 5000 meters final. Parul Chaudhary has done it again. She has won the bronze medal for India in the women's 5000 meters.

0: adding another medal to what has been a remarkable athletics campaign for the country. She has already stand out among many performers from India in the women's 3000 meter steeplechase medal as well. And you know, there was plenty of attention to Seema as well after bringing home the bronze medal in 10,000 meters. Expectations were high, but Parul Chaudhary has done it again, another medal from athletics.
1: हॉकी की बात कर लेते हैं विदुषी, यहाँ पर भारत शानदार तरीके से एक तरफा अंदाज में बांग्लादेश पे पूरी तरह से हावी है। अंतिम जो क्वार्टर है खत्म होने वाला, 5 मिनट का समय बाकी और भारत ने 8-0 की लीड ले रखी है। यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह जो भारत के जबरदस्त डेक विलकर है, उन्होंने कमाल किया है। 27, 40 और 45, ये मैं मिनट बता रहा हूँ, 27वें मिनट में 40वें मिनट में 45वें मिनट में 3 गोल स्कोर किया, लेकिन शुरुआत की थी अभिषेक ने 3 तीसरे मिनट में पहला गोल किया था, जुगराज सिंह ने 22वें मिनट में गोल किया था, उसके अलावा बात करें सुखजीत सिंह ने 32वें मिनट में गोल किया, शिनालन लाखलाड़े ने 44वें और 45वें मिनट में लगातार 2 मिनट में 2 गोल स्कोर किया था। अभी इस वक्त भारत 8, बांग्लादेश 0 और खेल खत्म होने में महज 4.5 मिनट का समय बचा है।
0: We also have 2 athletics finals underway right now with plenty of Indian interest. The men's long jump and the men's javelin throw are happening simultaneously. So let's first take a closer look at the live action happening in the long jump and what difference an attempt can make. Let's begin with Murali Sri Shankar, who began with a 7.66 meter jump, which placed him 5th after the opening round. But he came roaring back with his second attempt, producing a superb 8.07 meters and moving straight up to the second position. That position stayed the same after his third attempt, recording 7.56. And there is movement for David Solomon Paturaj as well. He opened with 7.51 meters, which had him in the sixth position after the first attempt. His second jump measured 7.45 meters and that sees him currently in 7th. The position has remained the same after his third attempt, recording 7.70. The fourth one recording 7.45. Meanwhile, China's Shi Yang has maintained the first position so far while also hitting the season best with 8.17. Meanwhile, Shahid, what's the latest from the men's javelin throw?
1: बिल्कुल, Rohit Yadav और Yashvir Singh, इन दोनों खिलाड़ियों ने नीरज चोपड़ा की कमी महसूस अब तक नहीं होने दी। रमेश पतिराजे पीछे चल रहे हैं, रोहित यादव पहले स्थान पर हैं 84.35 मीटर दूर भाला फेंककर, वहीं यशवीर सिंह 83.56 मीटर भाला फेंककर दूसरे स्थान पर, यानी पहले और दूसरे स्थान पर भारतीय खिलाड़ी हैं। अगले घंटे में क्या घटित होता, कहां जाकर ऊंट किस करोड़ बैठता है, अगले घंटे आपको अपडेट में बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को अगले घंटे के बाद आने के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

वह गई न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, किसी के चले जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। वो छोटी छोटी सी बातें ही सच कहूँ तो हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा कई बार रोशन बना देती है। छोटी सी बात फिल्म का ये गाना था और वही है डगर, वही है सफर, लेकिन वही मेरा हम सफर वो नहीं है। और लता जी की आवाज जो है वो हमारे हर इमोशन में साथ रही है भाई, वो दर्द हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, गम हो, फिर आप कितने भी खुश हो, हर इमोशन को उन्होंने अपनी आवाज के साथ सजाया है, सवारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दो गाने और प्ले करती हूँ आप सभी के लिए। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने इराक के साथ में, गानों की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। अंदाज अलग अलग है लेकिन आवाज एक ही है। सुनिए, बने रहिएगा। गुड इवनिंग।

0: भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज से होती है।
1: अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना,
2: अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना।
1: आकाशवाणी FM रेनबो
3: 5:50 होने को है। प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी, और जिंदगी को और भी प्यारा बनाने के लिए कहते हैं ना, हम सभी के अंदर इमोशंस होते हैं। कई बार हम उन इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, कई बार हम अपनी ही दिल की बात दिल में रख लेते हैं। लेकिन ये जो गाने हैं और इन गानों को जिस तरह से गाया गया है, वो हमारे इमोशंस को कहते हैं ना, एक बाहर निकालने के लिए, वेंट आउट करने के लिए बहुत अच्छा और सही माध्यम रहता है। कई बार किसी से मोहब्बत का एक इजहार करना हो, इकरार करना हो, तो भी ये गाने काम आ जाते हैं। और कई बार जब किसी को कुछ ऐसी बात बतानी हो कि ये सही नहीं है या ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ज़िंदगी ऐसी नहीं होती है, तो फिर उसमें भी कुछ आवाज़ें और कुछ गाने ज़रूर काम आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और 6:05 के बाद होंगे समाचार। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी की फ़िलोसॉफी म्यूज़िक और किसी एक लता जी की आवाज़ के माध्यम से बहुत ही ब्यूटिफुली कन्वे की गई है, की जाती रही है। तो इसी बात के चलते अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और साथ साथ आपको बता दूं कि 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप लता जी को या कहते हैं ना कि अपनी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हो तो वो भी पहुंचा सकते हैं। 7 के बाद होगा रिक्वेस्ट आर। लेकिन चूंकि आज हम लता जी को याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन पर, तो अगर आप कोई गाना सुनना भी चाहते हो तो ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आज उनकी याद में ज़्यादा से ज़्यादा गाने हम प्ले कर सके। और आगे बढ़ते हैं इस गाने के साथ, क्योंकि मैंने कहा था ज़िंदगी और ज़िंदगी की फ़िलोसॉफ़ी, तो सुनिए। कभी कभी कहते हैं ना कि दर्द को इस तरह से भी बांटा जा सकता है। कहते हैं कैसे,

ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इसकी। कभी पहन लेता हूं, कभी उतार देता हूं, बस यही पेश कर रहा हूं। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं। जानता हूं वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा। जो याद रहेगा सिर्फ

आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, और इस जो बीच में छोटी सी हंसी आती है लता जी की ही आवाज़ में, वो इतनी ब्यूटीफुल है, ऐसा लगता है कि जैसे बस मोती से बिखर गए हो। 6:20 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अंदाज़े बयां, और हमने जो लव यू ज़िंदगी प्रोग्राम था उसमें कोशिश की थी कि लता जी के सोलो गाने अलग अलग अंदाज में अलग अलग एक्ट्रेसेस पे पिक्चराइज किए हुए ले सके। अब हम जो इस आर में गाने प्ले करने वाले हैं वो कोशिश करेंगे डुएट सॉन्ग्स हों। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे आप भी अपनी कोई बात हो, हम तक पहुंचाना चाहते हो तो पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग गाने मुझ तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बात ऐसी हो रही है कि सुबह से जो गाने बज रहे हैं, क्योंकि आज ऑलमोस्ट सभी लोग लता जी के गानों के साथ में अपनी प्लेलिस्ट लेकर आए हैं, तो बहुत सारे गाने वैसे हैं जो सुबह से बार बार बज रहे हैं। तो कृपया, मतलब आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि कुछ गाने हैं ना, कितनी भी बार सुनो वो कभी भी पुराने नहीं लगते, लेकिन कुछ एक अंदाज़ अलग भी निकल कर आए, ऐसी कोशिश रहेगी। तो चलिए इसी बात के चलते, इस मतलब जो हम कह रहे हैं कि डुएट्स प्ले कर रही हूँ, इसी बात के चलते अगला गाना आपकी नज़र कर रही हूँ, और जैसे ही ये म्यूज़िक बजता है हमें ध्यान आ जाता है कौन सा गाना है। आप ही की रिक्वेस्ट है, जी हाँ, आप में से काफ़ी लोग आंधी फिल्म का गाना सुनना चाहते थे, सो ये आंधी फिल्म का गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ। बने रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिए, और साथ साथ बता दूँ कि 6:30 एशियन गेम्स स्पोर्ट्स अपडेट आएंगे, सुनिएगा।

0: दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप सीवीसी की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज से होती है।
1: अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना,
2: अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो, और 6:30 पर आपको बता दूं कि एशियन गेम्स से जुड़े हुए अपडेट्स आप सुन पाएंगे। आज लता दीदी का कहते ना कि हम उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो उनको म्यूज़िक से बेहतर और आदरांजलि क्या होगी। तो इसी बात के चलते 7 के बाद तो खैर आप रिक्वेस्ट आर होने ही वाला है, लेकिन इसके बीच में भी अगर आप कोई बात या अपनी किस्सा कोई शेयर करना चाहते, जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि उनकी जो स्कूल थी वो उसके सामने से लता जी निकला करती थी, तो वो बाहर आके खड़ा हुआ करते थे और लता जी आके उनसे पूछती थी का ये शारदा संपली का, एंड देन उनकी गाड़ी आती थी और वो निकल जाया करते थे। इसी तरह से मुझे प्रकाश जी का मैसेज आया कि उनको आकाशवाणी स्टूडियो में लता जी से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ था। ऐसी कुछ बातों से ही अपना शो
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: वेलकम बैक टू योर एशियन गेम्स अपडेट वेयर द इंडियन फ्लैग इज बैक ऑन द पोडियम। आई एम विदुषी वत्स विद मोहम्मद शाहिद आजमी एंड वी हैव ह्यूज एथलेटिक्स अपडेट कमिंग इन लाइव फ्रॉम द एशियन गेम्स। इंडिया हैज वॉन मोर देन 300 एथलेटिक्स मेडल एट द एशियन गेम्स एंड इट इज मुरली श्रीशंकर हु हैज क्रिएटेड दिस लैंडमार्क मोमेंट। श्रीशंकर विंस सिल्वर इन द मेन्स लॉन्ग जंप, प्रोड्यूस्ड अ बेस्ट जंप ऑफ 8.07 मीटर्स टू finish with the silver medal, successfully defending the silver medal he won at the previous games. A two-time Commonwealth Games silver medalist once again delivers on this big stage, but this final also had a difficult moment for the Indian star. Srishankar had to retire from the competition after suffering an injury during his fourth attempt. Still, that 8.07 meter effort that had already done the job, securing another Asian Games silver. But this is not all. The Indian performance from athletics does not pause here. There is more from medals at this moment that we are excited to share.
6: बिल्कुल, भारत को एक ही इवेंट में दोहरी सफलता मिली, दोहरी खुशी मिली है। मेंस जेवलिन थ्रो में भारत ने शानदार डबल पोडियम फिनिश किया। यशवीर सिंह ने सिल्वर तो रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यशवीर सिंह ने अपने आखिरी प्रयास में 85.72 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया। वहीं रोहित यादव का आखिरी प्रयास फाउल जरूर गया, लेकिन उन्होंने 84.35 मीटर का थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल अपने कब्जे में कर लिया। गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल रुमेश पथिराजा ने जीता, उन्होंने आखिरी प्रयास में 88.55 मीटर का थ्रो करके जो शानदार उनका थ्रो था स्वर्ण पदक दिला गया। हालांकि उन्होंने चौथे अटेम्प्ट में ही 88.33 की दूरी नाप ली थी, वहीं उनका स्वर्ण पदक पक्का हो गया था। लेकिन भारत के लिए यकीनी तौर पर जेवलिन थ्रो में जो उम्मीद की जा रही थी नीरज चोपड़ा की, हालांकि कमी जरूर रही, अगर होते शायद गोल्ड तक जाते, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने दो पदक जीतकर डबल खुशी जरूर दी है विदुषी।
5: Absolutely, the action is unfolding right now. The medals are coming in, records are being broken, and India is making its presence felt across athletics and boxing as well. To take a quick look at some absolutely amazing headlines we have had in the last hour and a half, Parul Chaudhary does it again, bronze for India in the women's 5000 meters. Vithya Ramraj creates history with a bronze medal and a national record in the women's 400 meter hurdles. She has gone past P.T. Usha's 42-year-old national record. Gulveer Singh adds another silver and Kapil Pokhriyal storms into the semi-finals of the men's 90 kilo category. One more update is that Pooja has qualified for the women's 800 meter final after finishing 5th in her heat.
6: बिल्कुल भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करते हैं। एक तरफा अंदाज में भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी, 10-0 से हराया। बता देते किसने किसने गोल किया। हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल स्कोर किया 27वें, 40वें और 45वें मिनट में, लेकिन खाता खोला था अभिषेक ने 3रे मिनट में गोल करके। वहीं सुखजीत सिंह ने 32वें, शिलानंद लाकड़ा ने 44वें और 45वें मिनट में, संजय ने 59वें मिनट में, जबकि

भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के

0: जो ताबूत में आखिरी कील था उसे ठोका मनदीप सिंह ने 60वें मिनट में। इस तरह बांग्लादेश को चारों खाने चित करते हुए भारत ने जीत दर्ज कर ली हॉकी मुकाबले में।
1: Absolutely, more fantastic news this hour as we say these games are with twists and turns. This one comes from India men's 4 into 400 meter relay team, which has now headed into the final. The Indian quartet of Dharmveer Chaudhary, Rajesh Ramesh, Manu and Jay Kumar has stormed into the final after clocking 3 minutes 1.49 seconds in heat 2. And this is the big headline, that is the fastest time across both heats. So India not only qualifies, but does it with the quickest time of the entire heats. And right now, there is more relay action underway. The women's 4 into 100 meter relay final has just started. It's just about to take our attention to the track and see how India is doing in this one. India is making its presence felt on the track and the momentum continues.
0: बिल्कुल, उम्मीद करेंगे यहाँ भी भारत को पदक मिले। कुछ लम्हों बाद decide हो जाएगा, फैसला हो जाएगा यहाँ पर किसके खाते में पदक जाता है। फिलहाल हमारा समय समाप्त हो रहा है इस घंटे की अपडेट के लिए। अब मिलेंगे आपसे ठीक 7:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

107.1 FM रेनबो पर लता जी की गानों के साथ और बातों के साथ कहाँ समय निकल गया पता ही नहीं चला। करीब करीब दो घंटे से हम लोग गाने सुन रहे हैं और इतनी मेलेडी है कि इसमें कहाँ समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वो हर पिच परफेक्ट सुर लगाना उनका और हर इमोशन को इतना सही तरीके से अपने म्यूज़िक के जरिए

बयान करना कि ऐसा लगता है कि बस जैसे ये हम ही कह रहे हैं। 7 बजे होंगे समाचार और अब समाचारों के बाद प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसका नाम है हम तुम, जिसमें आप अपनी पसंद के गाने सुन पाएंगे। साथ साथ बता दूं कि आज एक और सेलिब्रिटी का बर्थडे है ना। लता जी का तो हम मतलब कहते हैं ना कि उनको उनके हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक और एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कलाकार है, उनका भी आज जन्मदिन है। तो उनका नाम बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनकी इतनी फिल्में देखने के बावजूद आज मैं कब से देख रही थी तो कोई जिक्र नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप ही से पूछ लेती हूँ कि कौन से एक और एक बहुत ही पॉपुलर हमारे हिंदी सिनेमा के कलाकार हैं जिनका भी आज जन्मदिन है। तो मैसेज में बताइएगा 8657661071 पर कि और किसका बर्थडे है। और साथ साथ में जाते जाते एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सा गाना अदनान सामी और लता जी की आवाज़ में प्ले कर रही हूँ मैं। और कहते हैं ना कि हर एक कलाकार का ये सपना होता है कि लता जी के साथ वो परफॉर्म करें। तो इसी बात के चलते इन्होंने भी ये गाना कंपोज़ किया, अदनान सामी ने ही कंपोज़ किया हुआ गाना है। तो इस गाने को सुनिए और बने रहिएगा हमारे साथ 7 बजकर जब वापस हम तुम में हम मिलेंगे रादर 7:10 पे, तो आपकी रिक्वेस्ट के गाने तो होंगे ही 8657661071।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। 7:11 हो रहे हैं और प्रोग्राम हम तुम शुरू हो चुका है। और मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि चूंकि आज हम लता जी को तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर का भी बर्थडे है, तो वो कौन है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कहीं थोड़ी ओवर शेडो से हो जाती है। तो रणबीर कपूर का बर्थडे है आज, तो हम सबकी तरफ से, एफएम रेनबो की तरफ से रादर, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि कई चरित्रों को इतना जीवंत वो स्क्रीन पर लेके आते हैं कि हमें लगता है कि ये जैसे हम उनके साथ रिलेट भी कर लेते हैं, और वो आज की जनरेशन के एक बहुत ही जाने माने कलाकार भी, एक लेगेसी के साथ है वो। तो चलिए उनके दो गाने प्ले करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और आप ही के रिक्वेस्ट के गाने। यस, सो कुछ गानों के बाद हम लता जी के साथ तो हैं ही, लेकिन यस, रणबीर कपूर को भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ।

मैंने जब पूछा कि आज किसका बर्थडे, तो रणबीर कपूर सभी लोगों ने सही जवाब दिया। सो जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत लंबी फहरिस्त है, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। 8657661071 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस गाने को अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान ने गाया है, तो अरिजीत सिंह का भी ये एक बहुत ही अलग अंदाज है, क्योंकि हम उनको एक सॉफ्ट रोमांटिक गानों के तौर पर ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिस एनर्जी के साथ ये गाना गाया है वो भी एक बहुत ही खास बात है। 7:21, चलिए अब हम अपने ट्रैक की तरफ मुड़ते हैं जो हम लोगों ने 5 बजे से पकड़ रखा है। तो आप ही की रिक्वेस्ट पे ये अगला गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। यस, अब थोड़े पुराने आएंगे, थोड़े नए गाने आएंगे, क्योंकि रणबीर की जब बात आती है तो नए गाने ही आने वाले थे, लेकिन अब वापस से थोड़ा सा मिक्स्ड बैग सॉन्ग्स बजेंगे, क्योंकि कुछ आप बहुत पुराने गाने भेज रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि चूंकि आकाशवाणी है तो पुराने गाने भी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उतने पुराने गाने कभी थोड़े से बजाने, वो ट्रैक के साथ में दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गाने आपकी पसंद के प्ले कर सकूँ, लेकिन मेरे हमदर्द मेरे दोस्त का ये वाला जो गाना है, ये 3-4 लोगों ने भेजा है मुझे, आप लोगों के लिए ये गाना।

0: for the Asian Games 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: वेलकम बैक टू द एशियन गेम्स अपडेट। आई एम विदुषी वत्स विद मोहम्मद शाहिद आजमी। द डे एट द गेम्स टुडे हैज जस्ट एंडेड एंड इट्स टाइम टू सी हाउ द डे हैज बीन फॉर इंडिया टुडे। बट बिफोर दैट, इन आवर लास्ट अपडेट वी टोल्ड यू दैट द वुमेन्स 4x100 मीटर्स रिले फाइनल हैड गॉट अंडर वे। वेल, देयर इज नो पोडियम फिनिश फॉर इंडिया इन दिस वन। द इंडियन क्वार्टेट ऑफ तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना एंड अभिनया हैव फिनिश्ड फोर्थ, clocking a season's best of 43.57 seconds, but India missed the podium by just 0.05 seconds. A difficult baton exchange cost the Indian team valuable ground. But that's not all that we have from this absolutely fascinating day of competition. It has been a day of twists, turns, dramatic finishes, and most importantly, four more silver medals for India. And if we talk about the silver medal story of the day, it was Aisha Singh who set the momentum rolling. Aisha won silver in the women's 25 meter pistol, producing a brilliant score of 38 in an incredibly dramatic final. And this was a final that demanded composure. Five shoot-offs for Aisha, five moments where the pressure kept rising, but she kept her calm and fought her way to that silver medal. That first silver medal set the tone for what became a remarkable medal run for India today. And then came another one from athletics, Yashveer Singh, the throw that won silver. Yashveer saved his best for the last, producing a personal best of 85.72 meters on his final attempt. Every throw went further than the last. Then came another outstanding performance from Gulveer Singh after his silver in 10,000 meters. Gulveer has now added another silver in the men's 1500 meters, this time with a new personal best.
3: जी बिल्कुल, रजत पदक के बाद कांस्य पदक की बात कर लेते हैं। आज भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए चार कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात एथलेटिक्स की, पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। पारुल का इन एशियन गेम्स में यह दूसरा पदक है। पारुल ने इससे पहले 5000 मीटर में 15:14.61 सेकंड का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं आज पुरुषों के जेवलिन थ्रो में रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रोहित ने 84.35 मीटर का शानदार थ्रो किया। महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स में विद्या रामराज ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने 54.75 का समय निकालते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी कायम कर डाला। और आखिर में कुराश से अच्छी खबर आई। महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में पिंकी बलहारा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में तीन मेडल पक्के हो गए। बात तीन मुकाबलों की नहीं बल्कि तीन ऐसे मैच थे जिसने मेडल की न सिर्फ आस बढ़ाई है बल्कि मेडल का रंग भी बदलने की उम्मीद जताई है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के किए हैं।
2: And as we wrap up what today has been a remarkable day for India, let's now look ahead to tomorrow and the action that awaits. There's a pretty good lineup across disciplines with several Indian athletes ready to take center stage. If we look at archery, we have the men's and women's individual round of 32 and 16. We'll be looking at Neeraj Chauhan, Dheeraj, and we'll be looking at Kirti as well. And of course, when it comes to athletics, well, it's another busy day. We have the women's high jump final where expectations will be high from Pooja. We have the women's hammer throw final scheduled with Anushka and Tanya carrying our hopes. Then comes the men's 800 meter final with Mohammed Afzal in action, and we'll also be looking forward to the men's

0: 5,000 meter final, where all eyes will once again be on Gulveer Singh and Avinash Sable. In boxing as well, some big semi-final bouts coming up for us. The women's 65 kilo semi-final, India's Parveen will take on China's opponent. Men's 80 kilo semi-final, Ankush will face Uzbekistan's opponent. While in men's plus 90 kilogram semi-final, India's Narendra will be up against Kazakhstan's opponent as well.
1: जी बिल्कुल, अब मेरे टैली पे चलते हैं, बताते हैं चाइना ने 132 गोल्ड, 53 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज समेत 230 पदक जीते हैं। 230 पद के साथ सबसे ऊपर है जापान की बात करें, 41 गोल्ड, 68 सिल्वर, 63 इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल, 172 पदक है। दूसरे पायदान पर वहीं कोरिया की बात करें, 21 गोल्ड मेडल हैं, 26 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज समेत 90 पदक है। भारत की बात कर लेते, 4 गोल्ड, 20 सिल्वर, 21 कांस्य समेत कुल 45 पदक जीते। इन 45 पदकों में 19 पदक केवल एथलेटिक्स से आए, जबकि 12 पदक शूटिंग से आए हैं। अब कल का दिन जब नया शुरू होगा, वहां देखना होगा भारत किस तरह का प्रदर्शन करता है। लेकिन आज की अंतिम अपडेट में यह बताते हुए, आज रात 10 बजे विशेष हमारी रिपोर्ट जरूर सुनिएगा जो एशियन गेम्स पर आधारित है। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वस को कहते हुए अनुमति दीजिए, कल सुबह ठीक 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: कौन हो,
1: मुझसे ना पूछोगे तुम मेरे कौन हो। हर दिन रिक्वेस्ट प्ले करते हैं, फिर भी अगर एक दिन इतनी सारे रिक्वेस्ट में से कहीं आपकी रिक्वेस्ट पूछ रह जाती है तो आप तुरंत मुझसे पूछने लग जाते हो कि अब आप हमारे कौन हैं। ऐसा तो नहीं बनता ना, हर दिन रिक्वेस्ट प्ले होती है, हर दिन आपके नाम आते हैं। और इसी बात के चलते चलिए अब वापस से भी आपके नाम पढ़ लेते हैं। तो फिरोजीगन पुरिया जी का मैसेज आया है, राकेश माथुर जी का मैसेज आया है, विजेंद्र घटोल का अकोला से, राजेंद्र परमार जी का, दीपा पालकर जी दिग्दर्शन और कविता, प्रांजल पाटिल का जोगेश्वरी से, प्रकाश शिंदे जी का मैसेज आया है, प्रिया का छत्तीसगढ़ से, संजय दर्शन नंदा जी और इनका नाम है शिवा गोप और इनका पूरा फैमिली है, पूरा परिवार है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से, प्रशित बोरकर का मैसेज आया है, मुकेश कश्यप जी का मैसेज आया है, पूरा परिवार है इनका मुरादापुर से, पंकज मोहड़ का मैसेज आया है, बलकरण वर्मा जी का मैसेज आया है, पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और ये मैसेज आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, प्रमोद चिंचोलकर का, चेतन कुमार का मैसेज आया, अरविंद कुलकर्णी वैदेही जी और साथ ही सुनील पांचाल, गणेश पाटिल का, दत्तात्रेय आड़त का, अजय साखरे मेहर अरोरा, साथ ही साथ में पीएस नावकर और पूरा परिवार है नरवेल महाराष्ट्र से, नलेश्वर नगर नलवेर महाराष्ट्र से, दत्ता केदार पंढरपुर से, और रविंद्र कद्रेकर का दादर से मैसेज आया, आकांक्षा मनोज सिन्हा अहमदाबाद से, संजय पाटिल अशोक पाटिल वर्ली से, संजय पाटिल हाँ जी, साथ ही प्रज्ञा वनारसे का मैसेज आया है, प्रणव शिंदे, स्मिता विवेक नेवालकर का मैसेज आया है, अंजू का अंधेरी से मैसेज आया है, साथ ही साथ में गणेश मगर मुंगी का पैठन से मैसेज आया है। सो कोशिश मेरी यही है, इसमें से कोई गाना मेरी अपनी पसंद का नहीं था, आप ही की भेजी हुई रिक्वेस्ट थी, लेकिन अगर मेरे पास 50-60 लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि इतने सारे गाने मैं प्ले कर सकूं। ऐसे में अगर किसी की रिक्वेस्ट रह जाती है तो वो जो बात होती है कि आपने हमारी रिक्वेस्ट प्ले नहीं की वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह सारी बातें, तो ऐसे ना करें आज नहीं तो कल, क्योंकि आप तो रोज़ ही मैसेज करने वालों में से है। अच्छा लगता है राधर आप सबके जो मैसेज आते हैं तब। संतोष गावंड वर्ली कोलीवाड़ा से मैसेज है, तो यस जो मैसेज आ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला गाना आपके लिए प्ले करती हूँ, कौन सा वाला, यस क्योंकि आपका और हमारा तो वादा है भाई, कितना प्यारा वादा है ना, तो इस वादे के साथ में कि आप 107.1 FM रेनबो के साथ जुड़े ही रहने वाले हैं, ये अगला गाना प्ले कर रही हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ।

भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज़।

लता जी के बर्थ एनिवर्सरी पे ये म्यूजिकल जर्नी हम न जाने कितनी देर और चालू रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि गाने इतने मेलोडियस है, म्यूजिकल है। लेकिन कहते हैं ना कि घड़ी किसी के लिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता। 7:52 हो रहे हैं, देनी होगी आपको मुझे इजाज़त। और 8 बजे के बाद अंग्रेजी गानों के साथ विद्यासागर होंगे आपके साथ में। लेकिन क्योंकि आज रणबीर कपूर का भी बर्थडे है, तो उनके भी फिल्मों के कुछ गानों की जो रिक्वेस्ट आई है, उन 2 गानों के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। बने रहिएगा आप मेरे साथ 107.1 FM रेनबो पर। ये 2 गाने तो हिंदी के आने वाले हैं इसलिए, और दीजिएगा इजाज़त। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, और आने वाले जो फेस्टिवल्स हैं उनको एंजॉय करिए। टाटा, बाय बाय, नमस्कार। आपके बहुत सारे मैसेजेस देख के बहुत अच्छा लगा। कुछ गाने नहीं प्ले कर पाई क्योंकि समय कम पड़ जाता है, तो जिनके गाने बजे उनको मतलब अच्छा ही लगता है, जिनके गाने नहीं बजा पाए, नहीं इंक्लूड कर पाए हमारे शो में, उनको कहते हैं ना कि दिल से, तहे दिल से सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि समय उतनी सारी परमिशन नहीं देता। चलिए, बने रहिएगा आप इसी चैनल के साथ में। टाटा, बाय बाय।

0: गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में

0: बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
4: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
3: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
5: So if you want to make more export,
6: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
5: 1 year before.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
7: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ 0 tolerance policy लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम

0: से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
1: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
2: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
1: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
3: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई।
1: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency, aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a six-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals in men's javelin throw. Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump, Gulveer Singh in 1500 meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National CT Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said at the same time, the government declared Shehzad Bhatti Network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act. Mr. Shah also launched a new extradition portal which will synergize and expedite the efforts to bring back fugitives from abroad. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority, Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said, India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year, from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
5: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the seventh largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
4: The centre will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi today, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said, the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. He said, a central team will be sent to Karnataka on 3rd of October to assess the drought situation.
6: कर्नाटक में 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं
7: इन कर्नाटका वी आर सेंडिंग अ टीम ऑन अक्टूबर 3rd टू असेस द सिचुएशन देयर आई हैव स्पोकन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग अ टीम देयर आई विल पर्सनली आल्सो विजिट दोस स्टेट्स टू असेस द सिचुएशन वी विल स्टैंड फर्मली विद आवर फार्मर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स विद फुल स्ट्रेंथ टू डील विद दिस सिचुएशन
6: पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए
4: The Agriculture and Farmers Welfare Minister today addressed the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in the national capital today. He called upon states to complete preparations for the Rabi season through coordinated planning, scientific assessment and close field level monitoring. Mr. Chauhan said that amid climate change,

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक।

0: गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते। पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा रजत पदक पे निशाना। कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में 3 और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा। 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 83.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56, तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेज में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। 4थे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे, तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। 4थे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली 4थे स्थान पर रही, तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गईं। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट आउट का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट आउट जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट आउट में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट आउट तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत की पदक की की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84

0: अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर है। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है, लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 हो चुके हैं।
1: मध्य एशिया में करीब 3500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया। बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: गोइंग टू द कुराश अरीना वेयर पिंकी बलहारा हैज सिक्योर्ड ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स अंडर 78 किलोग्राम कैटेगरी। पिंकी वॉज इन एक्शन इन द सेमी फाइनल टुडे अगेंस्ट साउथ कोरियाज मू सुमिन एंड द बाउट एंडेड 5-0 इन द फेवर ऑफ द Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarter-final, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's third ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarter-finals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
1: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल 3 ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी 3 मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
0: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक 3 मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी 3 मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से 2 दिन में भारत के लिए पदकों की 2 हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज 4 धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि 2 आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All-Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea Korea's Kang Yoon-seo. It was a high-scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan, and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off. She survived this shoot-off and she's through to the quarter-finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले चार मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल तीसरे मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान मनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
3: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिला ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अभी यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
3: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झोंग को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सेपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11 बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं। तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे।

0: कितने पार लगे। दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
1: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासु ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेन सांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेव आर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सरवनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6थे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविन्द्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
0: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत, एकता थामी।
1: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
0: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
0: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में 3-3 भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे, और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानव अधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुवाट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
2: तू मेरे पास न थी, तू मेरे पास न थी, फिर भी सहर होने तक तेरा हर सांस मेरे जिस्म को छूकर गुजरा। कतरा कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी, लम्हा लम्हा तेरी खुशबू से मुअत्तर गुजरा।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल

कभी कभी हम अपने दिलबर के नजदीक होकर भी उनसे दूर होते हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ उनसे दूर होकर भी उनके बेहद करीब। अब आप सोचेंगे कि भला ये मुमकिन कैसे हो सकता है? तो जनाब ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जब हम दिल से किसी के पास होते हैं ना, तो फिर भले ही जिस्म से हम दूर ही क्यों ना हो, पर रहेंगे हमेशा उनके करीब ही।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल।

अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दें।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम है फ्रेंड्स, सुबह पुनः आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। आप इस वक्त रंगी महफिल की खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं बेहतरीन गजलों का। तो सुनते रहिए अपना खास प्रोग्राम रंगी महफिल, आकाशवाणी FM रेनबो पर।

दोस्तों, इतनी बड़ी कायनात में हम सिर्फ उस शख्स की तलाश करते हैं जो हमारा सच्चा हमसफर बन सकता है, जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है और हमारे जज्बात की कदर करे। हम उस शख्स के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं दोस्तों, और जब हमें अपनी कोशिश में कामयाबी मिलती है तो यकीनन उस वक्त हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।

दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपने सुझाव शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedback@fmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedback@fmrainbow@gmail.com। और सुनना ना भूले हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: दोस्तों आप इस वक्त रंग की महफिल की खूबसूरत और हसीन महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं बेहतरीन खूबसूरत गजलों का। कहीं मत जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा, तारीख बदल जाएगी। वक्त नदियों को उछाले के उड़ाए पर्वत, वक्त नदियों को उछाले के उड़ाए पर्वत, उम्र का काम गुजरना है, गुजर जाएगी।

दोस्तों फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है रंगे महफिल से इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन आप कहीं जाइए सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, शब खैर, शुभ रात्रि।

रात्रि के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। विदेश छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए नया प्रत्यार्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी पहलों को लागू करने पर सहमत। केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में टीमें भेजेगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के 6 किलोमीटर लंबे बारबिल बोलानी खादन रेलखंड दोहरीकरण परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री बागदलेना सोपकोवियाक जोनेका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्यसमूह की बैठक की से अध्यक्षता की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीटों को बधाई दी है। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 12:03 और 5 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं एसएम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। In the chance to make you dance, you will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
5: No!
4: Samba?
5: No!
4: Rumba?
5: No!

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

रात्रि का 1 बजा है। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। विदेश में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए नया प्रत्यार्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी पहलों को लागू करने पर सहमत। केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में टीमें भेजेगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के 6 किलोमीटर लंबे बारबिल बोलानी खादन रेलखंड दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए 122 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री मागदालेना सबकोवियाक जानेका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीटों को बधाई दी है। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 1:03 और 17 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुहानी रात।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: कुछ कुछ
0: मैं छोड़ रहा।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

राति के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। विदेश में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए नया प्रत्यार्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी पहलों को लागू करने पर सहमत। केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में टीमें भेजेगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे के 6 किलोमीटर लंबे बारबिल बोलानी खादन रेलखंड दोहरीकरण परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री मागदालेना सोपकोवियाक जानेका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीटों को बधाई दी है। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

2:03 और 17 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: गारे गारे
1: जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये हमको बटला
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर इन्ना आया है तू

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला, गा
1: एक चतुर नार।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये साहब ने मुझे रिहर्सल के लिए बोला, मैं आता हूँ। जब उन्होंने गाने की रिहर्सल दी तो मैं चुप हो गई। मैंने बोला, बाप रे, ये कैसे होगा अब मुझसे, क्योंकि उस चीज की आदत ही नहीं थी हमको। उन्होंने कहा, रिहर्सल की जगह नहीं होता तो बदल देता हूँ। उन्होंने कहा बदल देता हूँ, और मेरे एकदम गुस्सा आ गया, क्योंकि बदल देना ये हमारे स्वभाव में नहीं है कि कोई कहे कि आप गाइए और हम गा नहीं सकते हैं तो हम प्लेबैक सिंगर कहे के। मैंने कहा, नहीं, मैं गाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं 15 दिन रिहर्सल करूंगी। और मैं वो गाना गाने के लिए गई, और वाकई उस गाने के बाद मुझे 100 का नोट हाथ पे रख के RD बनवन साहब ने कहा कि वाह, क्या गाया आपने।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। विदेश में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए नया प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी पहलुओं को लागू करने पर सहमत। केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में टीम भेजेगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रखा है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के 6 किलोमीटर लंबे बारबिल बोलानी खदान रेलखंड दोहरीकरण परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री मागदालेना सोपकोवियाक जानेरका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। दिल्ली में मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीटों को बधाई दी है। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आपके साथ, मैं आपका अपना दोस्त मोहन सभी का स्वागत करता हूं मिडनाइट मेलोडी कार्यक्रम में।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए

हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या एवन पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। विदेश में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए नया प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों की एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी पहलों को लागू करने पर सहमत। केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में टीमें भेजेगी। भारत ने इस वर्ष वस्तु और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे बुधवार से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मित्रों की बैठक में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर से दस्तावेज एकत्र करेंगे और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीटों को बधाई दी है। ये थे अभी तक के प्रमुख समाचार।

आकाशवाणी। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं सारेगामापा प्रोग्राम में। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू की आवाज में, फिल्म आरजू से।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।